影子力广播电台，听众朋友们，我们现在播送恰迪斯加尔语的民间歌曲，请收听。

और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का संगीतमय पाठ, अयोध्या कांड का 58वां भाग, जिसमें आप सुनेंगे

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

वकान इंती दारे विसी परमरेंता विस्त्रिक स्वारत द्वारिबु एम्पत पुलुतुजु इंडिया माजु दिंगान फोकोस यंगला भी बसार पाड़ा रिसेट बढ़ना बांग तिंगी पंडे रापकान हासिल रिसेट मंजारी टेक्नोलॉजी दान पड़ोक सरता पनिकातान पार्तिवसी पासे इंडस्ट्री या मनुजु पासा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF दान इनिशियाटिव रिसेट पंगनम बांगान तन इनोवासी एट द ई स निलाई सपुलू मिलर उरो यंग बर्तु जुआन उद्योग मंडोरों ने सिद्ध बरिक्सी को तिंगी नामुन बर्तम पाक बसार सरता मंबनी मा पड़ोसहान इंतसान चातुर्प दिबिंदांग टेक्नोलॉजी मंडला दीप टेक डॉक्टर दिजेंद्र सिंह मनरूपकान पंतिंगान कर्जसामा अंतारा इंडिया दन उई दिबिंदांग बिंदांग तरदेपान दांगबर के बांगांग तमासो कचदासान बुआतन आई टेक्नोलॉजी कौआताम मटेरियल माजू पेयू टेक्नोलॉजी दन सेमी कंडक्टर सत्ता कॉम्पिटुअसी बर्किन जर्जा दन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम निकासी गिनरासी मंदातांग तरमासुक एनम गे बलिया मनातकान बाबा टेक्नोलॉजी को अंताम मने वारकान पलुआंग बसार उन्तु कर्जसा मायांग मंचा को पनलितियान पनरपान पनरवांगान कपतर लंपिलान दन पंग मांगान इकोसिस्टम को अंकुआतान यंग लबी लुआ सरकाई आई इंडिया सांगत तरकाई पाडा पनरपान या दिबिंदांग बिंदांग सापर्तिका सेहतान दान साइन संबरी ममासिकान अडोप्सी यंग बर तंग जवाब दान दापात दिपर्चाया मंगनाई सेमी कंडुक्टर मंत्री तरसिवत मनतकान बाबा इकोसिस्टम सेमी कंडुक्टर तर इलेक्ट्रॉनिक इंडिया यंग तरुस बर्ग वांगान तरता उपाय उई उन्तुक ममजूद कान नानते पासोक सेमी कंडुक्टर यंग लबी तांगो तन अमर मंबुका पलुवांग बागी कर्जा सामा यंग लबी अरात बलियो मनबुतकान बाबा एनसीआरटी सेमी कंडुक्टर इंडिया दान कर्जा चिप्स उई नंदपात मंजा की सिरिंगी हाल पनलितिया इनोवासी इन्वेस्ट आसीदान पंग बांगान इकोसिस्टम मंत्री तरसेबु जुगा मंडोरों को लाबोरासी अंगला भी कुआत दनाम टेक्नोलॉजी बरसी दान रामा लिंकुंगान सरता पन्न बांगान ततंगान इक्लिम दान लिंकुंगान सर्राया मंग इंडेफिकासी बिंडांग बिंडांग इनी सबगाई एरिया पंतिंग उन्तु कर्जसामा पनलितियान दि बाबा नांगुआन देवान पर्डाकांगांग दान टेक्नोलॉजी तेते चे इंडिया उई कम आजुआन सब्सटेंशियल तेला दिचे पाई दालार अलूर कर्जा प्रेरितास टेक्नोलॉजी बरसी दान रामा लिंकुंगान तरमासोक इन्वेस्टासी बरसामा सबजार नाम पुलु जूता उरो सलामा एम्पा ताहून उन्तु मंडकुंग पनलितियान कोलाबोराटे मंगनाई पंगोलेहान लिम्बा मंजादी हिड्रोजन पॉलिसी लाहूत दान दाऊर उलांग बैटेरियल कंदरांग लिस्ट्रिक डिस्कुसी उजुका मंचाकुप उदुसान परमंतुकान पुसत इनोवासी इंडिया उही टुंतु टेक्नोलॉजी पंगसियान दायादान पंगुजुकान के देरान लिस्ट्रिक यंग फिरांग दिपर दिकम बांगान सबकाई वाडा उन्तुक ममुंदुकान कैपेसिटास पनलितियान इंफ्रास्ट्रक्चर पंगुंजुकान कलिहान सेंतुंदुर दान इकोसिस्टम स्टार्टअप दारी कदुआ बेलापी हक इंडिया दान उई जुगा सालिंग बर पार्टिसिपासी पंगताहुआन मंगनाई हिड्रोजन वैली दान मरुपाया मंजालिन कर्जासामा तरकाई स्टैंडर कसलमतान हिड्रोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह मनतकान बाबा पोटेंसी कर्जासामा दिबिडांग हिड्रोजन हिजाओ जुगा दपात मंडकुंग पर पनिंगतान पर डगंगांग दान इन्वेस्टासी तरमसुक एक्सपोर्ट हिड्रोजन हिजाओ दारी इंडिया क उई दलाम जांका मंगनेंगा तरकई प्रोग्राम हरिजन उरूप डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंगतकान बाबा पार्टिसिपासी इंडिया आकार मंपर लुआस पर लुआंग बाड़ी पारा पनलिती इंडिया उन्तक बमित्रा देंगान इंस्टीट्यूशी उरोपा दलाम बिंडांग पनलितियान मुखातिर यंग मंजादी प्रेरितास बरसा मा इंडिया तथा बर्ड कमिटमेंट उन्तक मनलिसाई कान निगोसियासी ससेगारा मुमकिन कान दन मंग हड़प कान कसे पाकतान यंग संबागिन सालिंग मंग उमुम खान सरता मंपर लुआस पर लुआंग बागी पारा पनलिती इंस्टीट्यूशी दल इंडस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुगा मंगेजक डेलीगेसी ETRE उन्तुक मांग इंडिफिकासी विदांग में डांग दी माना प्योरितास पनलिती यान दान इनोवासी इंडिया सरता उरोपा दपात बर्तमु खुसूस या यंग मांग मुमकिन कान कोलाबोरासी दला मुंतुक पनलितियान बरसामा पंग बांगान टेक्नोलॉजी तन पंग इंगात कान स्कारा का गियातान या मन्यतकान बाबा इंडिया मांडांग यूरोपा से बगाई मित्रा पनलितियान यंग पंतेंग मनिंगात ककुआतान इंस्टीट्यूशन पनलितियान माजू अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर
பண்ணிருத்தியான்.

0: ஆனால் பண்டாதி மணிக்கு மாதிரி லாகுலாகு தாடி தெங்கா அந்த மிக்கியான் சொல்லசா இல்லை அச்சார காமி ஒன்றுக்கு பாகியாரினி அச்சார காமி ஒன்றுக்கு பெத்தோக் அடலா சபகாய் பரிக்கு செத்லா வர்த்தா பரித்தா லாகு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாலியா கோமெண்டார் லாகு ராக்கியா ஸ்பாட்லைட் தன் சப்பர்த்தி யாங் பியாசா காமி மங்கா கீ தெங்கா அச்சார பெசோக் ஹாரினியா சுடர சுடர பண்டிங்கா சபுலும் காமி மங்குடுடுங் தீரி தாரி உதாடா காமி மங்கு சாப்பக்கான் தெரியுமா காசி பானியாக் தன் சம்பை பர்ஜும்பா கம்மாலி பெசோக் படா பக்து ஜான் குலும்பாங் யாங் சாமா
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
4: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
3: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए

0: प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
1: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
0: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
4: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित

0: भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बी सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रुशिबिना देवी ने वुशु में रजत

0: important scheme of the Government of India. I have also benefited greatly from the scheme, and every household in my village has been provided with a tap connection. I thank Prime Minister Narendra Modi for launching the Jal Jeevan Mission.
1: मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये योजना चलाई है.
2: The Government of India has consistently encouraged Himachal Pradesh for its improved performance in functionality assessment and drinking water quality. The Ministry of Jal Shakti has made a provisional allocation of 258 crore 7 lakh rupees to the state under Jal Jeevan Mission 2.0 for the financial year 2026-27. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
3: The deep depression over the Bay of Bengal has crossed the North Andhra Pradesh, South Odisha coast near Kalingapatnam and is now moving further inland. The system is continuing to trigger heavy to extremely heavy rainfall over several parts of Odisha, particularly the southern districts. India Meteorological Department has warned of further heavy rain, strong winds, water logging and landslides as the system moves inland. Our correspondent brings the details.
4: In Odisha, incessant rain has disrupted normal life in several districts, especially the southern districts, with reports of waterlogging, landslides and disruption of road connectivity in vulnerable areas. The deep depression crossed the coast near Kalingapatnam late last night and is moving inland while gradually weakening. The IMD has issued red warning today for Navarangpur for extremely heavy rainfall, while orange warning has been issued for 6 and yellow for 8 other districts. The state government has deployed 33 Odisha Disaster Rapid Action Force teams with rescue equipment and shelters kept ready. Schools and Anganwadi centers remain closed in several vulnerable districts, while leave of government employees has been cancelled in affected areas. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
3: Rain is likely to lash most parts of West Bengal today. East and West Midnapur and Jhargram may receive heavy to very heavy rain. Heavy rain is also expected in Kolkata and several southern districts, including North and South 24 Parganas, Howrah, Bankura, Purulia, Paschim Bardhaman and Birbhum. Indian Wushu player Roshana Bina Devi Narim signed off with a silver medal in the women's 60kg Sanda event at the Asian Games after losing 0-2 to China's Shang Xion in the final at Nagoya in Japan. It is third Asian Games medal for Roshabina, who won a silver at the 2023 Hangzhou Asian Games and a bronze at the 2018 Jakarta Palembang Games. Indian rowers Satnam Singh and Salman Khan won bronze medal in the men's double sculls event this morning. The Indian pair stayed in second place until the 1500 meters mark before slipping to third in the final 500 meters. Reigning world champion D. Gukesh and R. Pragananda registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. Gukesh and Pragananda secured wins for India, while Arjun Irigasi was held to a draw by veteran Michael Adams. Nehal Sarin suffered a defeat against Luke McShane, playing with the white pieces. Pragananda defeated Nikita Vitigov, while Gukesh, playing black, defeated Daniel Howard Fernandez. And now for a look at today's newspapers. It's over to Renu Kataria.
5: Thank you, Sarabjit. The Asian Age leads with PM Chair's key government meet discusses 2047 roadmap reforms. Taking note of the late arrival and an early end, monsoon departs from Delhi in earliest withdrawal in 24 years, notes the Hindustan Times. The Hindu mentions India-EU to sign trade deal on December 16. The Asian Age reports Xi to kick off US visit with rare plainside welcome from Trump. The Financial Express takes note S&P, Fitch, ADB, OECD upbeat on FY27 growth. India growth outlook gets global upgrade. And finally, words long used in Caribbean, Bermuda now part of Oxford Dictionary, says the Times of India. And with that, it's back to you, Sarabjit.
3: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshabina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secured bronze in rowing men's double sculls. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खिदमात को मुंसलिक करना है। ये सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और ये अवामी खिदमत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से होकर सफर करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमत और अवामी राबतों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। ये सफर मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इस तरह तरतीब दिया गया कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत, राबतों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राबतों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर से वाराणसी के इस सफर में 10 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, जिलों और गांवों से होकर गुजर रहे हैं। दिल्ली की काबीना ने दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन और मुखन्नस अफराद को रोजगार के महफूज और बावकार मौके फराहम करना है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
7: कल नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता के जेर सदारत मुनक्किद काबिनी मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे, जिनमें से 1170 ऑटो खवातीन के लिए जबकि 130 ऑटो मुखन्नस अफराद के लिए मखसूस होंगे। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम से खवातीन और मुखन्नस अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि हर एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट खवातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 और मुखन्नस अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रिक ऑटो मुख्तस किए जाएंगे। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
6: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ टैक्सी ड्राइवरों और किसानों के लिए बड़े इकदाम करते हुए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का आगाज किया। भारत टैक्सी के जरिए टू व्हीलर टैक्सी और थ्री व्हीलर ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन पर कोई कमीशन नहीं देना होगा। इन ड्राइवरों को 5 लाख रुपए की सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में इसकी खिदमत शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिरों की झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नजदीक आधी रात के आसपास पेश आया।

0: बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वजारत खजाना ने कहा है कि इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस महीने की 27 तारीख को यानी इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम की जानिब से इस महीने की 28 तारीख से 30 तारीख तक पूरे मुल्क में 3 दिन की मुजवजा बैंक हड़ताल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, क्योंकि इससे कबल 26 और 27 सितंबर को खत्म हफ्ता की तातीलात भी हैं। वजारत ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों की शाखों, दफातर, एटीएम से वाबस्ता शाखों और करेंसी चेस्ट को इतवार के रोज पूरी तरह काम करने की मंजूरी दे दी है। इधर वजारत खजाना ने कहा है कि सरकार और बैंकों की इंतजामिया ने यूनियनों से अपील की है कि वो मुजवजा हड़ताल मुलतवी कर दें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए गए हैं कि जरूरी बैंककारी खिदमात बिला रुकावट जारी रहें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से वाबस्ता एक केस में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। कालेधन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक बैंक फ्रॉड केसों के तहत प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और इसी तरह की प्राइवेट फर्मों के दीगर एसोसिएट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से 290 करोड़ रुपए मालियत के बैंक फ्रॉड में मुलव्वस है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: मरकजी हुकूमत के जरिए 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के दूर दराज और देही इलाकों में रहने वाले लोगों को नल से पानी फराहम करना था, जिससे हिमाचल प्रदेश में लोगों को फायदा हो रहा है। दुश्वार गुजार जोग्राफियाई इलाके के बावजूद हिमाचल प्रदेश ऐसी पहाड़ी रियासतों में से एक बनकर उभरी है, जहां तकरीबन हर घर में नल के जरिए पीने का पानी सप्लाई हो रहा है। अभी तक रियासत के तकरीबन 17,09,000 देही घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और जल जीवन मिशन के प्रोविजन के मुताबिक योमिया फीकस 55 लीटर साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। शिमला जिले के बदेई गांव की रहने वाली ममता ने कहा कि जल जीवन मिशन ने उनके गांव के हर घर को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं, जिससे खास तौर से खवातीन को काफी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
1: इसी तरह से उमंगों वाले जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दूर दराज इलाकों में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया।
3: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: फालियत के जायजे और पीने के पानी के मेयार में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से हिमाचल प्रदेश की मुसलसल हौसला अफजाई की जा रही है। जल शक्ति की वजारत ने माली साल 2026-27 के लिए जल जीवन मिशन के दूसरे मरहले के तहत रियासत के लिए 258,07,00,000 रुपए की आर्जी रकम मुख्तस की है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: खलीज बंगाल के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कालिंगापट्टनम के नजदीक शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिल को पार कर गया है और अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसके जेर असर ओडिशा के कई हिस्सों, खासतौर पर जनूबी जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: उड़ीसा में लगातार बारिश होने से कई जिलों

0: में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई इलाकों में पानी भर जाने, चट्टानों के टुकड़े गिरने और सड़क राबते मुनक़ता हो जाने की इत्तला मिली है। कल रात देर गए हवा के गहरे दबाव का हल्का कलिंगापट्टनम के नजदीक साहिल को पार कर गया। उस वक्त 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे। अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जा रहा है। ओडिशा सरकार ने कुदरती आफात की सूरत में तेजी के साथ काम करने वाली 33 टीमों को बचाव से मुतालिक साजो सामान के साथ मुतय्यन किया है। कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्सों में आज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर और झारग्राम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता और कई जनूबी जिलों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। इनमें शिमाली और जनूबी 24 परगना, हावड़ा, बांकपुरा, परोलिया और बीरभूम शामिल हैं। शिमाली बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। साहिली जिलों जनूबी 24 परगना और मशरकी और मगरबी मिदनापुर में हवा के तेज झक्कड़ चलने की भी पेशगोई की गई है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में न जाएं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अंडमान, निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे और मराठवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इधर गोवा, महाराष्ट्र और रायलसीमा में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी और वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन के झांग शियाओ यू से 3-0 से हार गईं। रोशबीना ने 2023 के हांगजू एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा जबकि उज्बेकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की है, जबकि आजमूदाकार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इधर निहाल सरीन को लूक मैक्शेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए निकिता वित्युगोव को हराया, जबकि सियाह मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने डेनियल हार्वर्ड फर्नांडिस को शिकस्त दी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को 6 सुर्खी बनाया है कि तरक्की पजीर ममालिक को फैसला साज इदारों में जगह दी जानी चाहिए। अखबार इनकलाब वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हवाले से लिखता है, भारत अचानक रूस से खाम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता और न ही फौरन दूसरे सप्लायर्स पर शिफ्ट हो सकता है। अखबार की एक अहम सुर्खी है, सरकारी बैंकों में 27 सितंबर बरोज एतवार भी होगा काम, हुकूमत ने हिदायत जारी की। जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी, ड्राइवरों को मिलेगा 5 लाख रुपए का समाजी तहफुज।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5

अभी आप सुन रहे थे स्वरगंगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आरब अली खान का राग अहिर भैरव में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे असीम अली खान। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उद्योग पत्रिका। आज भेंट वार्ता रहेगी यूपीआई आसान लेनदेन की नई पहचान। श्री मनीष मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कमल किशोर जी की बातचीत होगी।

0: उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: अपने सभी श्रोता मित्रों को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। खरीदारी से लेकर बिल भुगतान और पैसे भेजने तक डिजिटल भुगतान ने वित्तीय लेन देन को काफी आसान बना दिया है। हमारी जिंदगी आसान भी हो गई है। इनमें UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने विशेष रूप से अपनी पहचान बनाई है। अब नगद रखने की कोई परेशानी नहीं होती है। UPI क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कई सवाल आते हैं। आज UPI से जुड़े आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मिश्रा जी को। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
3: धन्यवाद कमल जी।
2: बिल्कुल आसान शब्दों में ये समझाइए कि ये UPI क्या है और ये किस तरह काम करता है।
3: इसको मैं एक आम आदमी की लैंग्वेज में आपको मैं पूरा बताता हूँ। जैसे अगर आपने देखा होगा, जो डिजिटल पेमेंटें जो होती हैं, या तो NEFT हो रही है या RTS हो रहा है, जो बैंकिंग रूट से जा रही है, जिसको क्लियरिंग में या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने में एक बैच में जाती है। जैसे जो RTGS होती है वो रियल टाइम सेटलमेंट होती है, यानी कि जब हम करते हैं तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, या IMPS होता है इमीडिएट ओवर। NEFT की 6 साइकिलें हैं, जो दिन में हर घंटे में साइकिल है उसकी, उस साइकिल पे वो प्रोसेस होती है, यानी कि बैच भी प्रोसेस होती है। तो उसी श्रृंखला में, जिसको फिनटेक इंडस्ट्री की बोलेंगे, तो फिनटेक इंडस्ट्री जब इवॉल्व हुई तो उसमें जो पेमेंट सोल्यूशन है, उसमें इनोवेशन हुआ। तो उसमें सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड आया था, आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड, उसमें एक चिप होती थी, वहां से स्वैप होता था, उससे सारा ट्रांजेक्शन चलता था।
2: साथ साथ डेबिट कार्ड भी था।
3: डेबिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड, मतलब कार्ड का एक समझ लीजिए, प्रीपेड कार्ड या क्रेडिट कार्ड में उसमें क्रेडिट लिमिट होती थी, डेबिट कार्ड में लिमिट नहीं होती थी। तो वो ऐसा, अब जब स्मार्टफोन का जब चलन हिंदुस्तान में बढ़ा, तो उसमें मोबाइल ऐप, ये पहले अगर आपने देखा होगा आपने, तो पहले केवल जो वॉलेट सिस्टम चलता था, यानी कि उसमें कंपनियां प्रीपेड पैसे उसमें डाल के, या आप उसमें पैसे डालते थे, 1000 रुपए डाला आपने, 500 डाला, केवल वही आप यूज कर पाते थे, वो भी केवल पीयर टू पीयर, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी, कोई उसमें मर्चेंट या दुकानदार इन्वॉल्व नहीं होता था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती थी, यानी कि पैसे आप नहीं भेज सकते थे, जितने पैसे आपने वॉलेट में रखे हैं, आपने पॉइंट आपको जो मिले हैं उससे आपका होता था। आप 10 साल पहले की बात करेंगे, जब जिस श्रृंखला में कंपनियां जब हिंदुस्तान में आई थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती गई, अब इस पेमेंट सिस्टम में फिर RBI ने एक लाइसेंस जो इशू किया, जिसको पेमेंट गेटवे का लाइसेंस बोलते हैं, या पेमेंट एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे, जिसमें बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होने शुरू हुई, यानी कि ऐसी कंपनी को राइट दिया गया कि वो पैसे इधर उधर भेज सके, तो उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे का लाइसेंस या पेमेंट का लाइसेंस। जो लाइसेंस पहले रेजर पे या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आप देखते होंगे, जो आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, तो उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं, या बैंक अकाउंट का UID पासवर्ड डालते हैं, OTP आता है, आप पेमेंट करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये UPI आया है, जिसके लिए जो NPCI है, जो नेशनल पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम है हिंदुस्तान का, वही मॉनिटर करता है ये RTS, NEFT या जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है, स्पेशली चेक भी वही मॉनिटर करता था, यानी पहले जो चेक भी क्लियर होता है वो NPCI ही क्लियर करता था। RBI के अंडर वो एक बॉडी है जो कि जिसके लिए वो चार्जेस देता है। तो RBI ने NPCI ने एक लाइसेंस निकाला, जिसको बोलते हैं TPAP, थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर का एक लाइसेंस हुआ, सर्विस प्रोवाइडर। तो उसमें ये वाला सिस्टम लगाया गया, जिसमें एक स्पॉन्सर बैंक होता है, यानी कि एक मोबाइल ऐप वाली कंपनियां या टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, वो कंपनियां उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर स्पॉन्सर बैंक के थ्रू दो बैंकों के बीच में बात करता है, यानी कि जब हम यहाँ से UPI करते हैं वो दूसरे बैंक में जाता है, तो एक बैंक के थ्रू ही रूट होता है वो। ये आप कह सकते हो कि ये चूंकि IMPS बैंकिंग चैनल के थ्रू जाता है, बट ये जो UPI है वो बार कोड या QR कोड के सिस्टम से, या UPI का जो हैंडल है, देखा होगा कि कुछ भी XYZ@GooglePay या फोन पे या व्हाटएवर, उसके थ्रू जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी से ये संभव हो पाया, ये दो प्रोटोकॉल के रूट से रिसीवर और गिवर जो है बात आपस में करते हैं, जो कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन मूव होती है।
2: मनीष जी, ये मोबाइल नंबर, QR कोड और अकाउंट के जरिए भुगतान या लेन देन में कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है?
3: देखिए, सबसे अगर सेफ की बात करें तो सबसे सेफ तो जो है आपका बैंकिंग चैनल ही सबसे सेफ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप छोटी ट्रांजेक्शन करते हैं, ये जो UPI लाया गया या वॉलेट सिस्टम का सिस्टम लाया गया, शुरू में आपने देखा होगा पहले UPI 2000 रुपए चलता था, फिर उसकी लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाई, उसको 1 लाख रुपए, 10,000 करा, फिर 1 लाख करा, आप 5 लाख तक आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो सिस्टम जब इवॉल्व हुआ, जब गवर्नमेंट ने या RBI ने NPCI ने सिस्टम को और स्ट्रांग किया, टेक्नोलॉजी और से डेवलप हुई, तो वो लिमिट बढ़ती चली गई।
2: तो क्या UPI का उपयोग क्या सिर्फ खरीदारी और पैसे के लेन देन यानी कि भेजने तक ही सीमित है या कुछ और भी?
3: UPI का मेजर यूज तो पेमेंट में ही है, obviously.
2: तो एक CA के दृष्टिकोण से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दृष्टिकोण से डिजिटल रिकॉर्ड का भी इसमें महत्व रखता है, जैसे कि आपने NPCI की बात की है।
3: अगर आपको याद होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब नोटबंदी कह सकते हैं उसको, तो गवर्नमेंट

0: चाहती है या कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसका जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो फॉर्मल के रास्ते पे चले, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो सरकार को पता हो कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। उसके दो फायदे हैं। उसका एक तो फायदा ये है कि सरकार को ये पता लगता है कि हमारा एक मार्केट साइज कितना है या GDP में वो अकाउंटिंग में आता है। दूसरा, पब्लिक वेलफेयर के लिए और बाकी स्कीमें निकालने के लिए कहाँ पे क्या कंट्रोल करना, उसके लिए भी फायदा होता है। तो डिजिटल डिमोनेटाइजेशन से फायदा यही हुआ कि जो सारी पेमेंट है उस समय UPI आ चुका था, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर उस टाइम हुआ। तो जैसे अब सरकार को पता है कि एक किराने वाला कितना पैसा ले दे रहा है या पेट्रोल से कितना भरा जा रहा है, आप सारा रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग से ऑलवेज डिसीजन मेकिंग में उसका फायदा होता है।
1: यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मतलब उसको काफी फायदा हो सकता है।
0: हम जैसे CA हैं, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे काम ये, हमें तो अगर आप अकाउंटिंग का रूल देखोगे सबसे पहले किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS या उससे कुछ क्रक्स निकाल पाएंगे उस डेटा से। पहले डेटा होगा तभी इन्फॉर्मेशन होगी।
1: तो मनीष जी, अक्सर देखा जाता है कि हम UPI ऑटो पे है या फिर UPI लाइट है, UPI 1-2-3 पे है, ये क्या है और इनके क्या फायदे हैं?
0: देखिए, UPI जो लाइट है वो यानी कि 2000 तक जो छोटी ट्रांजेक्शन है उसको लाइट में डाला गया। आपने दूसरा ऑटो पे बताया, ऑटो पे ई-NACH सिस्टम है, NACH इसको बोलते हैं, नेशनल क्लियरिंग सिस्टम में आपने फिक्स कर दिया कि UPI से इस डेट पे इतना रुपया कट जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑटो पे या UPI NACH।
1: तो ये जो UPI 1-2-3 पे ये क्या है?
0: ये मोबाइल के थ्रू SMS के थ्रू दो चीजें, एक इंटरनेट से जब ट्रांजेक्शन होती है यानी मोबाइल ऐप से जब ट्रांजेक्शन होती है तो वो ये UPI के थ्रू जाएगा, UPI हैंडल या बारकोड के थ्रू जाएगा या ऑटो पे के थ्रू जाएगा। और जब आप SMS से करते हैं, जब SMS करके तो SMS में एक कोड वर्ड डिसाइड कर दिया गया कि UPI 1-2-3 आ गया, आप ट्रांजेक्शन डालेंगे तो वो SMS से जो ट्रांजेक्शन हो रही है,
1: यानी कि आप विदाउट स्मार्टफोन के,
0: विदाउट स्मार्टफोन, गवर्नमेंट ने इसीलिए उसको भी लाया था कि जो बहुत बड़ी जनता है, रूरल जो जनता है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो UPI कैसे, उसका फायदा कैसे उठाए।
1: तो UPI पर ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड, ये इसका क्या रोल होता है, ये क्या है और ये कैसे काम करता है?
0: पहले क्या था कि हिंदुस्तान में कार्ड की बात करेंगे, जो कार्ड का जो सिस्टम था वो उस पर विदेशियों का ही कब्जा था, यानी कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये दो स्पेशली मेजर जो स्टेक होल्डर थे इस कार्ड के गुलामी में, तो ये टेक्नोलॉजी केवल इन लोगों के पास थी। अब जब हमारा अपना बैंकिंग सिस्टम है, हमारे पास अपना क्लियरिंग सिस्टम है, NPCI है, तो गवर्नमेंट ने फिर ये UPI सिस्टम जो ले आई, तो UPI वो रूपे जो है वो UPI यानी कि उसको NPCI जो है वो कंट्रोल करता है। NPCI ने ये रूपे कार्ड इंट्रोड्यूस किया मार्केट में।
1: वैसे हमने देखा है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फायदे तो बहुत होते हैं लेकिन उसके नुकसान भी कई बार झेलने पड़ते हैं और UPI में कई बार ऐसे परेशानी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा फ्रॉड या परेशानी किस प्रकार की संभावना बनी रहती है?
0: लेकिन UPI में जो ज्यादातर जो होता है उसमें अगर आपने गलत UPI कोड डाल दिया तो पैसा उसके पास चला गया, तो वो रिकॉल बैक नहीं होती है, वो एक बड़ी समस्या है जो नए लोगों के साथ होती है। आप बारकोड पे कर रहे हैं तो डिफरेंट है, या बारकोड में भी किसी ने दूसरा बारकोड लगा दिया तो वहां पे पैसे चले जाएंगे क्योंकि वहां पे बीच में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रही है, इसलिए आपको वहां पे ये प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा, चूंकि जनता उतनी ज्यादा शिक्षित नहीं है या उतनी ज्यादा टैक्स भी नहीं है, तो वो कभी कभी गलती से हो जाती है।
1: कोई व्यक्ति अगर गलती से ट्रांजेक्शन कर लेता है, किसी के पास पैसा चला जाता है, भेज देता है, तो उसे वापस लेने का क्या कोई उपाय हो सकता है?
0: बिल्कुल उपाय है, आप अपने बैंक को इंटीमेट करते हैं, उसको वो जहाँ पे पैसा गया रहता है वहाँ पे उस पर लियन लग जाता है
1: जी,
0: तो उतना पैसा वो आदमी यूज नहीं कर सकता है, तो वो फिर दोनों बैंक के आपस में बात करके उसको कॉल बैक कर लेते हैं।
1: तो वित्त प्रबंधन यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या फिर बड़े व्यापारी हैं उनके लिए किस प्रकार से ये UPI एक बेनिफिशियल हो सकता है?
0: जैसा कि मैंने यही बताया कि जो भी अगर कैश में ट्रांजेक्शन होती हैं तो उसका ना सरकार के पास कोई हिसाब किताब होता है और ना ही जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है वहां पे कोई उसका फायदा मिलता है। अब UPI ट्रांजेक्शन करेगा तो सरकार को पता लगता है ये महीने की 4 लाख की सेल कर रहा है या 5 लाख की सेल कर रहा है और ये इतने रुपए का माल खरीद रहा है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी है,
0: 100% जरूरी है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां आप सारा देखेंगे वहां पे ज्यादातर जो है डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम या वहां पे कैशलेस इकोनॉमी है। तो कैशलेस इकोनॉमी से फायदा यही है कि आप डेटा आपका रिकॉर्ड होता है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और उससे जो यूजर है उसको फायदा होता है। ये आपने आजकल देखा होगा जो डिजिटल लेंडिंग चल रही है यानी कि ऑनलाइन लोन देना या 1 मिनट में लोन मिल जाता है, 5 मिनट में आप ऑनलाइन आप नंबर डालते हैं, 4 OTP आता है आपके अकाउंट में पैसा, 4 रात के 12 बजे भी आ जाता है। क्यों हो पा रहा है? वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग UPI के थ्रू ज्यादातर ट्रांजेक्शन हो रही है या ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है,
1: तो बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
0: बैंक जाने का अवसर नहीं है, या जो छोटी NBFCs हैं या बड़ी NBFCs हैं उनको पता है कि आदमी इतना रुपया सेल कर रहा है या इतना रुपया कमा रहा है, इतना रुपया पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये पैसा उसकी क्रेडिट वर्थीनेस वहां से असेसमेंट हो जा रही है, उस एल्गो के बेस पे या उस डेटा के बेस वो डिसाइड कर लेता है कि इसको इतना रुपया देना है।
1: मनीष जी, आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हर वित्तीय लेन देन का ख्याल रखते हैं, तो क्या UPI से जो ट्रांजेक्शन

0: होता है उसका भी क्या कोई लेखा जोखा होता है?
1: यूपीआई तो एक माध्यम है केवल, यूपीआई पेमेंट करने का एक टेक्नोलॉजिकल माध्यम है। जो हिसाब किताब तो बैंक में ही रहेगा, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी सारे पैसे आते हैं, जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो दोनों बैंक अकाउंट, पैसा आएगा तब भी वो बैंक अकाउंट में आएगा, जाएगा तब भी बैंक अकाउंट से जाएगा।
0: इसमें आईटीआर का यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का इसमें क्या रोल हो सकता है?
1: इनकम टैक्स रिटर्न का यही रोल है, जब आप पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं और जा रहे हैं उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर जो है वो पैसे आपकी इनकम है और खर्चे हैं उसका हिसाब आपने रखा हुआ है, तो वो दोनों घटा के जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना
0: पड़ेगा। कि ऑडिट करना भी जरूरी है,
1: अगर एक लिमिट है कि अगर आप इतने रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप खाली सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए।
0: तो आजकल देखा जा रहा है कि और अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने यूपीआई की जो पॉलिसी है वो नई पॉलिसी घोषित की है, इसमें एमडीआर और पीटूपी और पीटूएम ये क्या चीज है, इसमें ये किस प्रकार से काम करते हैं, इससे क्या फायदा है?
1: इसका मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ थोड़ा। जब कोई भी नया सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसमें हर चीज के खर्चे हैं, हर चीज का एक्सपेंडिचर है। अब जैसे बैंक की खुलती थी, बैंक ब्रांच खुलती थी, ब्रांच के लोग बैठते थे, उसका ट्रांजेक्शन करते थे। ऐसे ही जब ऑनलाइन सिस्टम आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा है, सर्वर है, आने जाना, जो कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरनेट का खर्चा है या बाकी सारे खर्चे होते हैं। तो अब यूपीआई सिस्टम को सेटअप करने के लिए सरकार को सारा खर्चा वो एनपीसीआई कायदे से बियर कर रही थी। एनपीसीआई बैंकों को सब्सिडी देती थी या एनपीसीआई सबवेंशन कह सकते हैं उसको। अब बैंकें कोई चैरिटी तो है नहीं, बैंक भी अपना काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, और या कोई फाइनेंस कंपनी काम कर रही है या पेमेंट कंपनी जो काम कर रही है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है, कोई फ्री में काम नहीं करेगा। तो उस सबवेंशन जो था वो पहले एनपीसीआई देता था,
0: यानी कि मेंटेनेंस की जरूरत है कि हमें किस प्रकार से चलाना है सिस्टम को।
1: आप अपना घर चलाते हैं, जब आप घर चलाएंगे तो आपको अगर राशन लाना है, आपको गाड़ी चलानी है, तेल लगेगा, बिजली चलाओगे बिजली का लगेगा, तो इसको कोई फ्री कुछ चीज आती नहीं है, हवा पानी के अलावा कोई चीज आज फ्री नहीं। इवन पानी भी आपको अगर पेवर लेना है तो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: तो उसी तरह से जब यूपीआई सिस्टम जो चला तो उसमें पैसे लगते थे, तो सरकार ने शुरू में, कोई सरकार का काम है सपोर्ट करना नई चीजों को, तो शुरू में सरकार ने इसको फ्री चलाया, सबवेंशन दिया, सब्सिडी दिया, स्कीम दिया। जैसे ने देखा होगा शुरू में सिलेंडर पे सब्सिडी थी, पेट्रोल पे सब्सिडी थी, फिर धीरे धीरे वो फेज आउट मैनर में हटाई गई, क्योंकि सरकार को भी तो उसको अपना घाटे को मजबूत करना है। अब तो उसी श्रृंखला में सरकार ने ये वाला कदम उठाया, उसमें भी सरकार ने, अगर आप देखोगे जो ये रूल आया है इसमें 95% 96% लोग कुछ भी नहीं देना है। इसके दो पार्ट है, आप समराइज कर देता हूं। एक है पीयर टू पीयर, यानी कि पर्सन टू पर्सन टाइम अनलिमिटेड टाइम कुछ भी करते हो आप, आपको कुछ नहीं देना है, एक रुपया नहीं देना, यानी कि हम आप कोई भी किसी एक दूसरे को पैसा भेज दे कोई रुपया नहीं देना है। अब दूसरा आता है बिजनेस, बिजनेस में कस्टमर को कुछ भी नहीं देना है, कस्टमर कोई बियर नहीं करना है, कोई डायरेक्ट पैसा कस्टमर से बेचे नहीं करने वाला है। हाँ, जो बिजनेस है उसमें भी 2000 तक अगर कोई आपको पैसा बिजनेसमैन के पास आ रहा है यूपीआई के थ्रू तब कुछ नहीं देना है, 2000 के ऊपर जाना है तब एक सर्टन है, वो भी 300 रुपया है मैक्सिमम, मतलब आप 75,000 तक का ट्रांजेक्शन जब करने जाएंगे तब आपको 300 रुपया देना है।
0: मनीष जी, अब ये बताइए कि यूपीआई का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो आप जो क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं या जो हैंडल यूज कर रहे हैं वो राइटली यूज करें, जिसको पैसा देना है उसी को दें, और ज्यादातर कोशिश करें कि अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा के चले, प्रोटेक्ट करके चले, ये दो मेन चीज है।
0: अगर ओटीपी और यूपीआई और जो पिन आते हैं इन सबकी जो जानकारी होती है साझा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं करनी।
0: और कई बार ये भी देखा जाता है कुछ लिंक्स आते हैं उनको भी क्लिक नहीं करनी चाहिए।
1: इसको आप ऐसा समझिए कि पहले आप अनजान आदमी बात नहीं करते थे, तो आप मोबाइल पे कोई एसएमएस आए क्यों आप करोगे, या कोई चिट्ठी आ जाए आप फालतू थोड़ी खोल लोगे, अगर आप जानते हो उसको तो खोलिए, नहीं जानते मत खोलिए, जिसको आपसे बात करनी होगी करेगा, आपको जो भेजना होगा बताएगा आपको।
0: तो साथियों, यूपीआई के जरिए जो लेनदेन ने जो जीवन को आसान तो कर दिया है, लेकिन बेहद सावधानी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। किसी भी अनजान व्यक्ति से ओटीपी पिन वगैरह शेयर ना करें, ना तो किसी अनजान लिंक को क्लिक करें, सतर्कता और सावधानी में ही हम तो ये कह सकते हैं कि समझदारी। मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और यूपीआई के विषय में इतनी सारी जानकारियां आपने साझा की, लोगों को जागरूक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। उद्योग पत्रिका। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना समझना देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली
2: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign ministers' meeting held under the FIPIC framework. Meanwhile, the foreign ministers of the G4 countries, India, Brazil, Germany and Japan, have called for early reform of the United Nations Security Council, UNSC. In a joint ministerial statement, they emphasized that expansion of the council in both permanent and non-permanent categories is central to the reform. At least 9 passengers were burnt to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanathpur village under the Jewar police station area. Police said identities of the 9 deceased passengers have not yet been ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives. The Prime Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. The United States has said it is willing to explore a limited ceasefire between Russia and Ukraine, covering energy and grain. U.S. Secretary of State Marco Rubio said both sides have expressed interest in such an arrangement while stressing that no formal proposal or agreement has been reached. Pune will host the UCI Road World Championships in 2032, marking the first time cycling's prestigious global road championships would be held in India. The decision was announced at the UCI Congress in Montreal following Pune's final candidature presentation. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in the forenoon session today. The Sensex declined 704 points to 74,124, while the Nifty fell 235 points to 23,212 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: माध्यम से हमसे जुड़े रहना पसंद करते हैं उनके लिए हम मौजूद हैं YouTube के चैनल AIR न्यूज लाइव 24/7 पर।
1: भाई वाह, क्या बात है श्रुति जी, बड़ी जबरदस्त आपने
0: जी।
1: गाड़ी चलाई। लेकिन मेरा तो ये कहना, मेरा क्या,
0: जी।
1: संत कबीर का ये कहना है,
0: जी।
1: धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यानी जिंदगी में जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और सहजता से ही चलने पर असली सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है आपने। और वैसे भी रश्मि जी, अब त्योहारों का मौसम आ रहा है और धीरे धीरे ये ना हमारे घर आंगन में भी दस्तक दे रहा है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: हमने
1: जी,
0: तैयारियां करनी शुरू कर दी
1: जी।
0: हैं। तो इसी उत्सव के माहौल को ध्यान में रखते हुए हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं। और
1: मीठा मीठा
0: हाँ,
1: सवाल।
0: मीठा मीठा सवाल। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बताइए, घर में कोई खास मौका या त्योहार आने पर आप मीठे में सबसे पहले क्या बनाना तय करते हैं? और अपने जवाब हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट करिए, fmgoldga@gmail.com पर। और जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: गेस्ट इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। रश्मि देखो, पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी
1: जी
0: जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर की खिड़की से बंदरगाह पे लगे बड़े बड़े जहाज दिखते हैं। ये सुनकर मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई कि हमारा देश तो सदियों से समुन्दर से जुड़ा हुआ है, और आज यानी 24 सितंबर को हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है।
1: जी
0: और इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस साल 2026 और 27 दोनों के लिए एक साझा विषय दिया है,
1: जी
0: जिसका भाव है नीति को व्यवहार में बदलना और समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना।
1: बिल्कुल। और भाई, जो भारत है वो तो उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है श्रुति, और हमारे नाविक और मछुआरे परिवार इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। तो भाई,
0: जी
1: उनकी मेहनत के बिना ना तो बंदरगाह चलेंगे ना ही व्यापार आगे बढ़ेगा। और देखिए ना, संभावनाएं समुद्री पर्यटन की कितनी अपार संभावनाएं हैं। गोवा, केरल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात के तट, और इसके अलावा जिसे कहते हैं जैव विविधता, मछुआरे
0: बिल्कुल
1: समुदाय
0: बिल्कुल
1: और जलवायु संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार है समुद्र। तो भाई, इन तटीय परिवारों को हमारा प्रणाम, जिनकी वजह से हमारे घरों तक इतनी सारी चीजें पहुंच पाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म समुंदर में।
1: श्रुति, कल शाम को मुझे एक जगह ना ढोल बजने की आवाज आई, तो ना सच बताऊं कि मेरा जो मन है ना एकदम अपने गांव के मेले में पहुंच गया। वहां ना इतनी भीड़ और इतनी रौनक और इतने रंग एक साथ होते थे, और वहां ना एक हर साल एक मेला लगता था जिसमें झूले होते थे और मिट्टी के खिलौने होते थे, और सच बताऊं वो मशहूर जलेबी वाला जिसकी दुकान पर सबसे लंबी कतार लगती थी।
0: असल में गांव में लगने वाले मेले सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं होते, बल्कि हमारी गांव की संस्कृति की धड़कन हुआ करते हैं। फसल कटने के बाद पूरे साल की मेहनत का उत्सव इसी मेले में मनाया जाता है, और तभी लोकगीत गाए जाते हैं। कठपुतली, नौटंकी जैसी लोक कलाओं का मंचन तो पुराने समय में कितना हुआ करता था, और साथ ही जो गांव के कारीगरों को भी अपनी मेहनत को बेचने का ये मौका सबसे बढ़िया मिलता था।
1: बिल्कुल, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं और जो हमारे बुनकर हैं, लकड़ी के खिलौने गढ़ने वाले जो कारीगर हैं, भाई पूरे साल इन्हीं मेलों के इंतजार में तो रहते थे, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। यानी ये छोटे छोटे मेले गाँव की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी हुआ करते थे।
0: देखो, भारत में तो कुछ मेलों का इतिहास सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला सदियों पुराना ऊंट मेला है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, और आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसी तरह बिहार का सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े पशु मेलों में गिना जाता है ये मेला।
1: और जो अब देखो आपने कहा था ना, भाई सवेरे थोड़ा थोड़ा ठंडक सी जो महसूस हो रही है, तो अब हमें मेलों की भी याद आने लग गई। और भाई हमारे जो हरियाणा का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आएगा, और बहुत खूबसूरत वो मेला होता है। कुशल कारीगरों को मंच देने के लिए वो शुरू किया गया था।
0: और आपको एक बात बताऊं कि इस मेले में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भी हजारों शिल्पकार और लाखों दर्शक पहुंचते हैं। और इसी तरह मेरठ का नौचंदी मेला तो आपको याद ही होगा।

0: और अभी देखो नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में नरी सैमरी का मेला लगता है,
1: जी
0: कैला देवी का मेला लगता है और करौली का मेला भी बड़ा प्रसिद्ध मेला है।
1: वही श्रुति, वक्त के साथ इन मेलों का स्वरूप भी बदल गया है।
0: हाँ
1: पहले जहाँ
0: बिल्कुल
1: ये छोटे कस्बों और गांवों का सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, वहीं आज जो ये मेले हैं ना, बड़े संगठित आयोजन और प्रदर्शनी का रूप ले चुके हैं, जहाँ जो कारीगर हैं वो सीधे बड़े बाजार और खरीदारों तक पहुँचने का उन्हें मौका मिलता है।
0: हाँ देखो फिर भी उनकी आत्मा वही पुरानी है। आज भी अगर मौका मिले तो किसी नजदीकी मेले में जाकर वो पुराना अनुभव फिर से जिया जा सकता है कि नहीं।

0: अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, फिल्म थी राजा रानी।
1: और मेलों से हम वापस आते हैं अपने घर की ओर। जो मीठा
0: हाँ,
1: आप पूछ रही थी ना श्रुति जी, तो जवाब आ चुका है हमेशा की
0: बल्कि बल्कि मैं
1: तरह।
0: कहूंगी मेलों से मेलों पर आते
1: जी,
0: हैं।
1: मेलों से मेल पर आते हैं। तो
0: जी
1: पहली मेल आ गई है नवीन भाटिया जी, मोती
0: जी
1: नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि हमें पसंद है भाई बेसन के लड्डू, बहुत बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बेसन के लड्डू को नवीन भाटिया जी। आगे
0: देखो, मेरे पास भी एक मेल आई है। ये आई है डॉक्टर राजेश्वर राव जी की। ये लिखते हैं कि हम तो पायसम बनाने में बड़ा मजा आता है, और जिसे हिंदी में खीर कहते हैं, विद ड्राई फ्रूट्स। और पायसम में तो और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बड़ी
1: जी
0: स्वादिष्ट होती है पायसम खाने
1: जी
0: में।
1: और हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश कुमार ख्याला से, और लिख रहे हैं कि त्योहारों पर हलवा बनाते हैं और प्रोग्राम और गाने जो है वो साथ में होते हैं, तो भाई अब बहुत अच्छा लगता है हमें। भाई क्या
0: बिल्कुल।
1: बात है, मीठे मीठे गीतों और मीठा मीठा हलवा, तो भाई ये तो जबरदस्त एक जोड़ी बन
0: और
1: जाती है
0: देखिए, हलवा किसी और के यहाँ भी बनाया जाता
1: जी।
0: है। ये
1: कहाँ।
0: हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।
1: अच्छा
0: ये लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा और दूध की खीर बनती है।
1: भाई क्या बात है भाई, हम तो कहते हैं ना ये दिल है देसी। भाई जो देसी खाने में जो मजा है अपना, जो भारतीय खान पान है वो गजब है। और एक और मेल आया है शशि
0: जी
1: भूषण आदर्श नगर दिल्ली से, कह रहे हैं कि मीठे में खीर बनाते हैं, तो भाई देखिए दिल है देसी बिल्कुल, है ना
0: बिल्कुल। और देसी अगर दिल है तो गाना भी देसी होना
1: जी। हाँ, तो
0: चाहिए
1: ऐसे ही खत लिखते रहिए, मेल
0: ना।
1: लिखते रहिए और जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ।

0: देखिए रश्मि जी, कितना प्यारा गीत अभी हमने श्रोताओं को सुनाया, और ये गीत था फिल्म आए दिन बहार के, इस फिल्म से हमने लिया था, और गायिका थी आशा भोसले। और क्या हुआ रश्मि जी, एक मैं आपसे एक वाकया वो करना चाहती थी साझा। पिछले हफ्ते मैं ना घर की सफाई कर रही थी और एक दराज खुली तो उसमें न जाने कितने पुराने चार्जर और दो खराब मोबाइल पड़े हुए थे। तभी ख्याल आया कि ऐसा तो शायद हर घर में होता होगा।
1: जी, और ये जो पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इसको कहा जाता है ई कचरा। और भारत में
0: हाँ
1: इसके सुरक्षित निपटान के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं। और इन नियमों के तहत हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है श्रुति, कि वो पुराना मोबाइल और पुरानी बैटरी या खराब उपकरण सामान्य कूड़े में ना फेंके। जी
0: और सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए। कई मोबाइल कंपनियां और शोरूम भी आजकल तो पुराना फोन वापस लेने की सुविधा दे रहे हैं, और एक्चुअली इन जो उपकरणों में हानिकारक तत्व होते हैं जो अगर मिट्टी और पानी में मिल जाएं तो सेहत को बड़ा नुकसान साबित हो सकता है।
1: और देखिए, जो पुराना सामान जो होता है ना, वो कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है, वो भी हम कहेंगे तो वो सही नहीं होता, क्योंकि ये असंगठित जो बाजार में इन्हें बिना किसी सुरक्षा के लिए अगर तोड़ा जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जब अगली बार अपने घर से श्रुति कोई पुराना मोबाइल या बैटरी निकाले तो भाई
0: बिल्कुल
1: थोड़ी सजगता जरूर रखें और उन्हें आप सही जगह पहुंचाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना
0: और
1: है।
0: मेरी प्रार्थना ये है कि अगला गीत सुने।
1: जी।

0: शर्मीली फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: जी
0: रश्मि, आज सुबह जब चाय बनाते वक्त शहद की शीशी मेरे हाथ में आई ना, मैं शहद वाली चाय पीती हूँ,
1: जी
0: तो एक पुराना सवाल मेरे मन में कौंधा। आपको पता है कि मिस्र में हजारों साल पुराना शहद मिला है, वो आज भी खाने लायक है।
1: अच्छा अश्रुति, ये ना इस बड़ा दिलचस्प विज्ञान है इसके पीछे। दरअसल क्या होता है, शहद में ना पानी की मात्रा बहुत कम होती है और ये हवा से नमी खींचने का गुण रखता है, जिसमें बैक्टीरिया के लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव हो जाता है।
0: हाँ, तभी तो शहद का जो पीएच स्तर है ना, वो काफी अम्लीय होता है
1: देखिए
0: और लगभग 3 से 4.5 के बीच, जैसे नींबू के रस में होता है,
1: जी
0: वो भी तो अम्लीय माना जाता है। तो इस माहौल में ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पनप ही नहीं पाते।
1: और इसके अलावा श्रुति, मधुमक्खियां जो हैं वो शहद बनाते समय एक एंजाइम भी छोड़ती हैं जिसमें हल्की मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और ये भी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करता है।
0: यही तो वजह है कि हमारी नानी दादी हमेशा कहा करती थी कि शहद को कभी फ्रिज में मत रखो, बस उसे तो कस के बंद करके
1: भाई
0: बर्तन
1: क्या
0: में रख
1: बात है श्रुति, आज तो
0: दो।
1: मीठा मीठा बिल्कुल मीठे मीठे गीत सुना रहे हो, मीठा बनवा रही
0: देखो,
1: हो और शहद के बारे में बता रही
0: एक
1: हो।
0: काम करते हैं, मीठा नहीं, आपको थोड़ा खट्टा मीठा एहसास दिला देते हैं इस गीत से।
1: जी

0: खट्टा मीठा फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और श्रुति, घर की दहलीज पे जो है गणपति बप्पा जब अपने धाम लौटने की तैयारी करते हैं ना, तो सच बताऊं हर और एक खामोशी उदासी और एक ना भीनी सी मुस्कान ना, दोनों साथ साथ उतर आती हैं। तो बप्पा की विदाई का दिन बस आने ही वाला है, और जो लोग 2 दिन 3 दिन के गणपति रखते हैं वो लोग भी लगातार उनकी विदाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, इस विदाई को कैसे भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए, और साथ ही धरती के प्रति जिम्मेदारी भी हम
0: निभाई
1: अपनी
0: जाए।
1: निभाई जाए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विसर्जन नदी या तालाब में सीधे करने की जगह अब कई शहरों में नगर निगम ने कृत्रिम कुंड और मोबाइल टैंकों की व्यवस्था की है,
1: जी
0: जहां विसर्जन करने से नदी का जल जो है वो भी शुद्ध रहेगा और विधि विधान भी पूरा हो पाएगा।
1: जी और अगर जुलूस की बात करें श्रुति, तो भाई ढोल ताशे भजन और कीर्तन से माहौल को इतना ही उत्सवी बनाया जा सकता है। बस ध्यान देना ये है कि रात 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी सी धीमी कर दें, ताकि किसी को तकलीफ ना हो।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: जो फूल माला हम बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं, नारियल जैसी जो पूजा सामग्री हो, उसको पानी में बहाने की जगह जो निर्माल्य है, निर्माल्य कलश में डाला जाए। और सच बताऊं बहुत सी जगह ना इसे खाद बनाने के लिए भी काम में लाया जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: ठीक कह रही हो, यानी बप्पा का प्रसाद धरती के लिए भी वरदान बन सकता है। जो कल बप्पा की विदाई करें तो दिल में धरती के लिए भी उतनी ही श्रद्धा रखें, उतनी ही सच्चाई और उतनी ही भव्यता और दिव्यता से गणपति को विदाई दें।
1: जी, और ताकि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

दो लोग और जुड़ गए हैं, राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, विवेक चौधरी। वैसे कहते हैं जो भी खाना बना हो, लेकिन जरूरी ये है कि वो बाजारी खान पान

0: जो है रसायनों से मुक्त हो, और साथ में गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं रोहतक से, कह रहे हैं कि भाई खसखस का हलवा या पोस्त का हलवा उसको रात को भिगो दें और सुबह सिलबट्टे पर पीस कर बादाम मिला दें, और दिमाग के लिए दवाई का काम करता है, और दूध भी डालना पड़ता है पूरी सर्दी ये खाएं, और रोजाना और सुबह शरीर के में ताकत का भी काम करता है। शुक्रिया गौरी शंकर जी।
1: और देखो रश्मि, इन सारी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, हम अपने श्रोताओं के जवाब भी हम भूले नहीं, हमने
0: जी
1: सभी श्रोताओं को जवाब दिए हैं, और लेकिन श्रोता हमें मेल करते रहे, हमें पूरी उत्सुकता से इंतजार रहेगा। तो अब इस घर आंगन में थोड़ा सा सुस्ताना चाहिए कि
0: पर
1: नहीं
0: ये
1: सुस्ताना
0: आंगन सूना नहीं होगा, क्योंकि इसमें
1: चाहिए?
0: आपकी यादें हैं, और हम इसी के साथ इजाजत लेते हैं जाने की, और साथ में कहते हैं
1: के आप सभी को बहुत सारा स्नेह हमारी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, और हम फिर से इस घर आंगन में आपको मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे श्रुति बुरी
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और आज मैं आपके साथ हूं, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राह पर ले आती है जहां हमें मंजिल से ज्यादा जरूरत होती है सफर की। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी भर एक जगह ठहर कर अपनी मंजिल तलाशते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं बिना यह जाने कि उनकी मंजिल आखिर है कहाँ। साथियों, आज की हमारी फिल्म भी ऐसे ही एक मुसाफिर की कहानी कहती है। ज्यादा देर नहीं करते और आपको फिल्म का नाम बताते हैं। फिल्म का नाम है दूर का राही। जी हाँ साथियों, साल था 1971 और इस फिल्म से जुड़ा सबसे खास नाम था किशोर कुमार। दोस्तों, किशोर कुमार ने इस फिल्म में सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि फिल्म का निर्देशन, निर्माण और संगीत निर्देशन भी किया था। साथियों, फिल्म में उनके साथ थे महान अभिनेता अशोक कुमार और खूबसूरत अभिनेत्री तनुजा। तो आइए दोस्तों, आज के इस सफर में हम चलते हैं उस दौर की ओर जब किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक और निर्माता के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रहे थे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या

0: पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, दूर का राही की कहानी के केंद्र में है प्रशांत, जिसका किरदार किशोर कुमार जी ने निभाया। प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने निजी जीवन की सीमाओं से निकलकर समाज और इंसानियत की तलाश में आगे बढ़ता है। वह एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है, उसका जीवन जैसे एक लगातार चलने वाली यात्रा है। वह लोगों से मिलता है, उनके जीवन को देखता है, उनकी परेशानियों को समझता है और इस पूरी यात्रा में खुद भी जिंदगी के कई सवालों के जवाब तलाशता है। फिल्म का मूल भाव सिर्फ घटनाओं में नहीं बल्कि इंसान के भीतर चलने वाली भावनाओं और संघर्ष में दिखाई देता है। साथियों, यही वजह है कि दूर का राही को केवल एक सामान्य मनोरंजन फिल्म के रूप में नहीं देखा जाता। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन को दूर से देखता है और फिर भी उसके हर दर्द को अपने बहुत करीब महसूस करता है।

श्रोताओं, किशोर कुमार के बारे में हम अक्सर कहते हैं महान गायक, लेकिन किशोर कुमार की प्रतिभा सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं थी। साथियों, वह अभिनेता भी थे, निर्माता भी, निर्देशक भी और संगीतकार भी, और अपनी फिल्मों को लेकर उनका अंदाज भी बेहद अलग था। दूर का राही इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म में किशोर कुमार ने प्रशांत की मुख्य भूमिका निभाई और इसके साथ साथ निर्देशन, निर्माण और संगीत की जिम्मेदारी भी खुद संभाली। यानी कैमरे के सामने भी किशोर कुमार और कैमरे के पीछे भी साथियों किशोर कुमार। यह बात इस फिल्म को और भी खास बना देती है। साथियों, दूर का राही का संगीत भी किशोर कुमार की अपनी रचनात्मक दुनिया को दिखाता है। फिल्म के साउंडट्रैक में 8 गीत दर्ज हैं और इनमें किशोर कुमार के साथ हेमंत कुमार, मन्ना डे, अमित कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजें सुनाई देती हैं।

दोस्तों, फिल्म के कलाकारों की बात करें तो किशोर कुमार के साथ थीं तनुजा और अशोक कुमार। इस फिल्म को और भी खास बना देते हैं। तनुजा ने मोनिका का किरदार निभाया, जबकि अशोक कुमार ने जोसेफ की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अभी भट्टाचार्य, इफ्तिखार, असित सेन, पद्मा खन्ना, कैस्टो मुखर्जी और कई अन्य कलाकार भी दिखाई देते हैं। साथियों, अशोक कुमार और किशोर कुमार का रिश्ता भी हिंदी सिनेमा में बेहद खास रहा। दोनों भाई थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई थी। एक तरफ अशोक कुमार को हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के महान अभिनेताओं में गिना जाता है, तो दूसरी तरफ किशोर कुमार ने अभिनय, गायकी और संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग दुनिया बनाई।

साथियों, आज जब हम रंगीन फिल्मों और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के दौर में हैं, तब 1971 की इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। साथियों, दूर का राही को ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के रूप में दर्ज किया गया है। उस दौर में कहानी, अभिनय, संवाद और संगीत ही फिल्म की असली ताकत हुआ करते थे। और शायद दोस्तों, इसीलिए दूर का राही जैसी फिल्मों को आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के जो प्रेमी हैं वो याद करते हैं।

साथियों, इस फिल्म के गीत आज भी हमें यही याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक सफर है। कभी आसान है, कभी मुश्किल, कभी अकेला, लेकिन सफर हमेशा जारी रहता है।

दोस्तों, समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए, तो इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: देकर कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों में सलामती काउंसिल की तौसी को इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आज बिहार, झारखंड, विदर्भ और सिक्किम में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने अंडमान निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मर्दों की कबड्डी में दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने शुरू से ही अपना गलबा जारी रखा, जिसकी वजह से हाफ टाइम में उसे 23-11 की बढ़तरी हासिल हो गई थी, जिसे टीम ने सेकेंड हाफ में भी जारी रखा। सेकेंड हाफ को भारतीय टीम ने 14-10 से जीत लिया। इस दौरान ख्वातीन की भारतीय टीम ने भी इफ्तिताही मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ईरान को 37-23 से हराकर जीत की अपनी मुहिम बरकरार रखी। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म रहनुमा उसूल होना चाहिए। वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जजायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़राए खारिजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign ministers' meeting held under the FIPIC framework. During the meeting, the participating leaders reviewed the outcomes of the FIPIC summits and welcomed the progress in Indo-Pacific Island countries' cooperation, including under the 12-point action plan announced by Prime Minister Narendra Modi in 2023. They also discussed further cooperation in renewable energy, climate action, disaster resilience, education, healthcare, and capacity building. Electronics and IT Secretary S. Krishnan has said India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Addressing the inaugural session of the 13th Annual Public Affairs Forum of India 2026 in New Delhi today, Mr. Krishnan said India manufactures around 32 to 33 crore mobile phones annually. He added that five major global mobile phone brands are present in India and are manufacturing their devices in the country. The secretary said the government has launched the mobile phone manufacturing scheme to further scale up production, increase domestic value addition, strengthen supply chain resilience, and enhance India's global competitiveness.
3: We manufacture almost 99.2% of our total domestic demand in the country. The value addition which took place in India, which was about 10 to 15% about 10 years ago, 7, 8 years ago, has gone up now to about 22-23%. We eventually target a value addition of between 35 and 40% because that's important to keep the industry located in the country.
1: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the new Education Policy 2020.
4: The National Education Policy 2020 aims to bring major changes to the education system. It gives students more choices in selecting subjects. It also promotes skill development, research and innovation. Odisha is taking steps to implement the Education Policy 2020. The focus is on improving higher education and giving students more opportunities to learn new skills. In Odisha, colleges and universities are being aligned with the new policy. The focus is on improving the quality of education and preparing students for future jobs. The policy also promotes multidisciplinary education. Students can study subjects from different fields. It also gives importance to Indian languages and the use of technology in education. The government is also working to strengthen research and improve the link between educational institutions and industries. Describing the National Education Policy 2020 as a major step towards transforming the education system, Higher Education Minister of Odisha, Suryavanshi Suraj, says the policy will open new opportunities for students.

0: inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. Defending champions India have stormed into the men's Kabaddi semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storm into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित

0: भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
5: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
6: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति

और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति

रूप में पहचाने जाने लगेंगे। इनके जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी दिलचस्प स्टोरी हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन है आज के कलाकार। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म अली बाबा और 40 चोर का ये सॉन्ग।

यानी प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। मैं बात कर रही हूँ प्रेम चोपड़ा की। प्रेम चोपड़ा जी का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। देश के बंटवारे के बाद प्रेम चोपड़ा की फैमिली शिमला शिफ्ट हो गई। प्रेम चोपड़ा के पिता रणवीर लाल चोपड़ा एक सरकारी कर्मचारी थे और माता रूपानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा का शिमला में ही बचपन गुजरा और स्कूलिंग भी यहीं से हुई। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में प्रेम चोपड़ा ड्रामा में हिस्सा लेते थे और यहीं से इन्हें अभिनय का शौक चढ़ गया था और ये शौक उन्हें ग्रेजुएशन के बाद मुंबई खींच लाया। लेकिन हीरो बनने का सपना उतना आसान नहीं था। स्ट्रगलिंग के दौरान उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के साथ काम करने का मौका मिला। उसी दौरान प्रेम चोपड़ा को एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म हिट साबित हुई। इनकी फिल्म ने पंजाबी लैंग्वेज में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने बहुत सी हिंदी फिल्मों में पॉजिटिव भूमिकाएं की लेकिन वो फिल्में हिट नहीं हुई। फिर नेगेटिव रोल ऑफर हुए और प्रेम चोपड़ा ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर्दे में इनके नेगेटिव कैरेक्टर का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। आगे हम आपको इनकी फिल्मी करियर के से जुड़ी और भी बातें बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म बॉबी का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, जादूगर जादू कर जाएगा। तो शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किस खलनायक की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी समझे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ प्रेम चोपड़ा।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो कलाकार हैं उनका नाम है प्रेम चोपड़ा, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म हम हिंदुस्तानी वो कौन थी, शहीद सिकंदर आजम, तीसरी मंजिल। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि फिल्म शहीद में इन्होंने क्रांतिकारी सुखदेव का रोल किया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने उपकार, दो रास्ते, अनजाना, कटी पतंग, पूरब और पश्चिम, गोरा और काला, बॉबी, त्रिशूल, काला पत्थर, दोस्ताना, क्रांति जैसी बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया। ऐसा कोई भी दशक नहीं था जहां प्रेम चोपड़ा को काम न मिला हो। 1960 से लेकर 1923 तक ये करीब 400 फिल्मों में काम कर चुके हैं। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के साथ प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में काम किया। इनके इंटरव्यू से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। दरअसल, प्रेम चोपड़ा ने फिल्मों में इतने खलनायक का रोल किए हैं कि असल जिंदगी में भी लोग इन्हें देखकर अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे। आप सोचिए, प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक हुआ करती थी कि मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी अक्सर हिट साबित हुई। ये इस उम्र में भी प्रेम चोपड़ा ने पिछले साल फिल्म एनिमल में काम किया था। 88 बरस के हो चुके प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग आज भी जारी है। आगे आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म त्रिशूल का ये सुंदर सा सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं प्रेम चोपड़ा। दोस्तों चलिए अब आपको प्रेम चोपड़ा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। प्रेम चोपड़ा की शादी हिंदी सिनेमा के दिग्गज राज कपूर जी की पत्नी कृष्णा की छोटी बहन उमा से हुई थी। इनकी शादी जाने माने लेखक और फिल्म डायरेक्टर लेख टंडन ने करवाई थी। इनकी तीन बेटियाँ हैं रकिता, पुनीता और प्रेरणा। तीनों बेटियां फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से हुई है। उनके दामादों में बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी और विकास भल्ला जैसे नाम शामिल हैं। प्रेम चोपड़ा अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपको इनकी उपलब्धियों और अवार्ड्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए इनकी फिल्म कटी पतंग का ये खूबसूरत सा गाना।

दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा जी की, और कार्यक्रम भी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। तो बात करते हैं प्रेम चोपड़ा जी की, जिन्होंने 1976 में फिल्म दो अनजाने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2004 में उन्हें एटलांटिक सिटी में लीजेंड्स ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया। वहीं 2023 में प्रेम चोपड़ा को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इनकी बेटी रकिता नंदा ने अपने पिता की लाइफ प्रेम नाम है मेरा पर एक बुक लिखी थी। कुल मिलाकर प्रेम चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज़ के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शोहरत के साथ मान सम्मान भी कमाया है। तो इसी बात पे चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म दो रास्ते का ये गीत।

श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोताओं के मेल भी हमारे पास आ चुके हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्कीन जी का हमारे पास मेल आया है। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी और अन्नपूर्णा का जी का आया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। और आगे चलते हैं, ये हैं गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन।

शालीमार बाग से, और ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए फारूक अली खान और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, छत्तीसगढ़ भंवरपुर से राधेश्याम देवगन और चंपा, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्रीगंगानगर राजस्थान से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, कबीर, रेडियो श्रोता संघ बलौद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार है हमारे साथ, और ये हैं वीना मस्किन, आशीष राजा, डब्बू, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना, और ये हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह, ऋषभ, अनुभव, राम, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी, ये कालरी से हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए, और ये है मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौर, और मंसूर हसन है हमारे साथ, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, ये हैं कुम्हार हैंडा सहारनपुर से, और आगे बढ़ते हैं वडिंगा खेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे। प्रेम चोपड़ा का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अनूठा स्थान रखता है। अपने खलनायक, अपने खतरनाक अभिनय, यादगार डायलॉग और विचित्र अंदाज से इन्होंने दर्शकों के दिलों में खलनायक की छवि को स्थापित किया है, जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और महान कलाकार की कहानी और उसके जीवन के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम फिर से वापस आएंगे दोपहर के 3 बजे मैटिनी मेलोडीज के साथ, लेकिन तब तक सुनिए एनिमल फिल्म का ये गीत।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। और मैं आपके साथ हूँ आज मैटिनी मेलोडीज में, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कभी कभी जो दिल है ना, वो पंछी बनना चाहता है, सारी चिंताओं से दूर खुले आसमान में अपनी धुन पर उड़ना चाहता है। यही आज़ादी और मस्ती का एहसास कराता है फिल्म चोरी चोरी का ये खूबसूरत सदाबहार गीत। तो आइए लता मंगेशकर की मधुर आवाज में सुनते हैं पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, जिसके संगीतकार हैं शंकर जय किशन और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। किसी की आंखों में ऐसी शरारत हो कि दिल बार बार उन्हीं पर ठहर जाए और प्यार का इजहार भी हो जाए, तो फिर शिकायत कैसी। इसी नटखट अंदाज और मीठी मोहब्बत के साथ सुनिए फिल्म जंगली का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मुकेश ने। गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, जब मौसम सुहाना हो, हवाओं में प्यार खुला हो और दिल में कोई मीठा सा एहसास जाग उठे, तो भंवरों का गुनगुनाना और कलियों का खिलना भी किसी प्रेम गीत से कम नहीं लगता। इसी खूबसूरत मौसम और नटखट प्रेम की कहानी लेकर आया है फिल्म आराधना का ये सदाबहार गीत। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये मधुर नगमा। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।

दीवार में किसी का मिलना सिर्फ साथ मिलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सहारा पाना है जिसमें दिल को सुकून और आंखों को खुशी मिलती है। तो आइए लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो का ये प्यारा सा नगमा। और इस नगमे के जो गीतकार हैं वो हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, और अपनी खूबसूरत सी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

जब किसी की बेरुखी भी दिल को छेड़ने लगे तो शिकायत भी प्यार भरे अंदाज में ही निकलती है। कुछ ऐसी ही नटखट छेड़छाड़ और दिलकश अंदाज लिए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आज भी मुस्कान ले आता है। सुनिए फिल्म पेइंग गेस्ट का सदाबहार गीत, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत सचिन देव बर्मन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, दिल की बात जब शब्दों से कहानी मुश्किल हो कहनी मुश्किल हो जाए तो कभी कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है। दो दिलों के बीच की ही कि यही मीठी सी खामोशी और अनकही बातों का एहसास समेटे है ये खूबसूरत सा नगमा। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म छाया का ये गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देने का। कितने ही नगमे सुने, कितनी ही पुरानी यादों को फिर से महसूस किया, और अब आखिरी गीत भी कुछ ऐसा ही है जिसमें जुदाई की हल्की सी कसक है और फिर मिलने की एक उम्मीद। फिल्म प्यार की राहें का ये गीत तुमसे दूर चले, जिसे अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने। तो इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी आपसे विदा लेती हूँ। बस इतना याद रखिएगा, दूरियाँ चाहे कितनी भी हो, अच्छे गीत और खूबसूरत यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। तो सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाती रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन इकराम, हम आज लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।
2: तो सामईन इकराम, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें और अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं। उससे पहले आपके गोश गुजार करता चलूं कि मन की बात रेडियो की दुनिया में एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिलों को छूता है, सोच को जगाता है और कौम को एक साथ जोड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मन की बात। ये प्रोग्राम न सिर्फ रहनुमाई का ज़रिया है बल्कि अवामी जज्बात और कौमी तरजीहात की आईनादारी भी करता है। इसमें बात होती है तालीम की, नौजवानों के ख्वाबों की, किसानों की मेहनत की, ख्वातीन की कामयाबियों की और उन छोटे बड़े अकदामात की जो मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। मन की बात हमें याद दिलाता है कि हर शहरी की आवाज़ अहम है, ख्वाब कीमती है और हर कोशिश मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालती है। ये प्रोग्राम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी और समाज में क्या मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस सफ़र का हिस्सा बने, मन की बात सुने, उससे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में अमल के चराग रोशन करें, क्योंकि जब हम सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मुल्क की आवाज़ और मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार यानी 27 अक्टूबर को जब मन की बात नशर हो, रेडियो के करीब बैठें, दिल को खोलें और इस कौमी गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बनें। तो आइए सामईन, अब अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।
1: जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम इस प्रोग्राम में किसी ख़ास मौजू पर माहिरीन से उनके ख्यालात जानते हैं और उनसे मुस्तकबिल में होने वाले उसके असरात पर भी गुफ्तगू करते हैं। सहाफत, जिसे कभी मुआशरे का आईना कहा गया, कभी आवाम की आवाज़ और कभी इख्तदार के सामने सवाल उठाने वाली कुव्वत, वक्त के साथ सहाफत के ज़राए बदलते रहे। कभी अखबार के सफ़ात खबर का सबसे बड़ा ज़रिया थे, फिर रेडियो और टेलीविज़न ने सहाफत के दायरे को वसी किया और आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा जर्नलिज़म और मसनूई ज़हानत यानी AI ने सहाफत के पूरे मंजरनामे को एक नई सिमत दे दी है। आज एक खबर चंद लम्हों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। डेटा के जरिए खबरों के नए जाविये सामने आ रहे हैं और मसनूई ज़हानत खबर की तलाश, तर्जुमे, तजज़िये, तदवीन, हत्ता के मवाद की तैयारी तक में अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी सहाफ़ी की जगह ले लेगी? क्या आने वाले दौर में सहाफत ज़्यादा तेज़, ज़्यादा शफाफ और ज़्यादा मुअसर होगी, या खबरों की रफ्तार के साथ गलत मालूमात, मस्नूई मवाद और एतबार का बोहरान भी बढ़ेगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि सहाफत के मुस्तकबिल में इंसान कहाँ खड़ा होगा? इन्हीं सवालात पर गुफ्तगू के लिए आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है सहाफत का मुस्तकबिल, डाटा, AI और नई राहें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जामिया हमदर्द से डॉक्टर AQ सिद्दीकी। आप शोबे ज़राए इब्लाग यानी मास कम्युनिकेशन में दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। मैं आपका खुश आमदीद करता हूं। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब हैं। आपका ताल्लुक भी ज़राए इब्लाग यानी मास कम्युनिकेशन से ही है और आप भी दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। और सहाफ़ती दुनिया में सरगर्म अमल नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद नौमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र में एक बार फिर से खैर मक़दम करता हूँ।
3: आदाब।
4: बहुत शुक्रिया।

0: सर्च नहीं है या कहें कि एविडेंस नहीं मिलता है। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, बहुत आपको गुमराह कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके लिए क्या चीज़ है और
1: जी,
0: क्या चीज़ नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब AI से पहले जब हम न्यूज़ रूम में हुआ करते थे, कोई खबर आती थी तो उसको ब्रेक करने से पहले 10 बार देखा जाता
0: देखा
1: था,
0: जाता
1: उसके
0: था।
1: बारे में पता किया जाता था कि वाकई है या नहीं
0: हाँ
1: है।
0: हाँ हाँ
1: और फिर जो न्यूज़ रूम से लोग ये पूछते थे कि वहाँ हमारा कोई है या नहीं है, कोई हमारा नामनिगार वहाँ मौजूद है या नहीं है।
0: असल में क्या है कि
1: तो शेख साहब ने जो बात
0: सहाफत की मेन चीज़ है क्रेडिबिलिटी।
1: जी
0: अगर आप क्रेडिबिलिटी बनाए रखते हैं तो आप जर्नलिस्ट हैं। आजकल आप देखेंगे कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनकी मेन चीज़ है सहाफ़ी की, जो मेन चीज़ मैं मानता हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी है।
1: जी
0: अगर वो अपने कंटेंट में वो क्रेडिबिलिटी लाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है।
1: जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच एक नौजवान सहाफ़ी भी हैं, आप नाज़िम भी हैं, आप एंकर भी हैं। आज न्यूज़ रूम में रफ्तार की बहुत अहमियत है, और न्यूज़ रूम की अगर हम बात करें वहाँ रफ्तार ही है, अगर रफ्तार नहीं है तो आप न्यूज़ रूम में कामयाब नहीं हैं। बाज़ औक़ात सहाफ़ी से तवक्को की जाती है कि वो चंद मिनट में ख़बर तैयार करके शाये या नशर कर दे। आपके तजर्बे में खबर की रफ्तार और खबर की सेहत के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और हमेशा लोग चाहते हैं कि कोई भी अगर उनके कान में कोई ख़बर अगर लगी है तो
1: जी
2: उसके ताल्लुक से वो चाहते हैं कि उनको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन यहीं पर जो अभी पिछले सवाल में आप गुफ्तगू कर रहे थे खुर्शीद साहब से, कि एतबार,
1: जी
2: इसका मसला बहुत अहम होता
1: जी
2: है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें जर्नलिज्म में हमने ये भी पढ़ा कि सो मच इन्फॉर्मेशन मीन्स नो इन्फॉर्मेशन।
1: नो इन्फॉर्मेशन यस है।
2: तो आप सभी इस बात से मुत्तफिक हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में काम की क्या इन्फॉर्मेशन है?
1: जी
2: और यही चीज़ जो है वो डिफ़र करती है एक सहाफ़ी को और एक आम इंसान को, क्योंकि आजकल क्रिएटर लेड कंटेंट बहुत आ रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस आ जाती हैं, विजुअल कुछ कंटेंट आ जाता है, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन सहाफ़त है? ये एक बड़ा
1: ये
2: सवाल है।
1: सवाल है।
2: अब इस सवाल के जवाब में आ जाइए उन मीडिया हाउसेस पर जिन पर लोगों ने हमेशा एतबार किया।
1: जी
2: सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा ऑल इंडिया रेडियो ही है, कि किसी भी खबर को नशर करने से पहले उसकी हकीकत को पहचानना, जानना और
1: बिल्कुल
2: उसके बाद लोगों तक पहुंचाना।
1: बिल्कुल
2: जिस रफ्तार की आपने बात की है, उस रफ्तार के चक्कर में आज हमने देखा कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से
1: बिल्कुल
2: स्प्रेड हो रही है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन को बगैर जज किए हमने समाज में उसके असरात भी देखे, जो बहुत तेजी से उस पर हावी होने लगे हैं।
1: बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल
2: ऐसे हालात में सहाफियों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। क्या वो डेटा, क्या वो इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं,
1: बिल्कुल
2: ये आज भी एक सहाफी की ही जिम्मेदारी है। और इसी बुनियाद पर आज भी जो नौजवान हैं हमारे या मुल्क के जितने भी लोग बाखबर रहना चाहते हैं,
1: जी
2: वो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर काबिल एतमाद इदारों पर, काबिल एतमाद सहाफियों पर, काबिल एतमाद एजेंसियों पर
1: बिल्कुल
2: भरोसा करते
1: भरोसा
2: हैं, क्योंकि
1: करते हैं।
2: उनको पता है कि यहां से जो खबर आ रही है वही ठीक है, नहीं तो इस दौर में डीप फेक वीडियोस,
1: जी
2: सिंथेटिक इमेजेस,
1: बिल्कुल
2: इस तरह का कंटेंट आपके और हमारे सामने है कि आपकी और मेरी इमेज, सिद्दीकी साहब की और मेरी
1: बिल्कुल
2: वीडियो,
1: बिल्कुल
2: खुर्शीद
1: बिल्कुल
2: साहब की इमेज, हम उसके अंदर सही और गलत का पता लगाना
1: पता
2: मुश्किल
1: नहीं
2: हो
1: लगाना
2: जाता है।
1: मुश्किल
2: तो बड़ा
1: है
2: चैलेंजिंग है, लेकिन आपने
1: जी।
2: कहा कि हक की राह अब भी बीच के अंदर एक सहाफी की जिम्मेदारी।
1: बहुत शुक्रिया। सामईन कराम, गुफ्तगू अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां सहाफत और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक मजीद गहरा हुआ जाता है। आज डेटा जर्नलिज्म महज आदाद व शुमार पेश करने का नाम नहीं रहा, आदाद व शुमार के अंदर छिपी कहानियों को तलाश करना भी सहाफत का एक अहम मैदान बनता जा रहा है। तो अब हम आपसे डेटा जर्नलिज्म और मस्नूई ज़हानत के हवाले से जानना चाहेंगे कि मस्नूई ज़हानत यानी AI सहाफत के तकरीबन हर शोबे को मुतासिर कर रही है। खबर की तलाश, डेटा का तजजिया, तर्जुमा, खुलासा, ट्रांसक्रिप्शन और मवाद की तदवीन जैसे अवामी काम अब मस्नूई ज़हानत की मदद से तेज़ी से लिए जा रहे हैं और लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा ये होता है कि क्या AI सहाफ़ी का मुआविन बनेगा या मुस्तकबिल में सहाफ़ी का मुतबादिल? तो डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि AI के इस्तेमाल से सहाफत में काम की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है, लेकिन मस्नूई ज़हानत कभी कभी गलत मालूमात, जैसा कि नुमान साहब ने कहा, वो भी पैदा कर देती है और कर रही है। तो आपके ख्याल में सहाफत में AI के इस्तेमाल की अखलाकी हदूद क्या होनी चाहिए, और सहाफ़ी को AI से हासिल शुदा मालूमात को इस्तेमाल करने से पहले किस नौईयत की जाँच पड़ताल करनी चाहिए?

0: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। ये जो
1: जी
0: है इस वक्त ये है कि मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यकीनन एक बड़ा, जब ये चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ, जब वो सामने आया तो ये लगा कि ये नौकरी ख़त्म कर देगी या मुलाजमत ख़त्म कर देगी। लेकिन जो माहरीन का मानना ये है कि ये इसके साथ साथ, जैसे हमने कंप्यूटर से काम शुरू किया था, वैसे एक साथ साथ दोस्ती बना के काम कर सकते हैं।
1: जी
0: हम उन पर पूरी तरह से जो है वो रिलाई नहीं हो, बल्कि ये है, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास जो है बहुत से रिपोर्टर हैं
1: जी
0: जो बहुत अच्छे ज़बान नहीं लिख पाते हैं, लेकिन अच्छी रिपोर्टिंग कर लेते हैं।
1: जी
0: अब उनकी ज़बान बड़ी ख़राब होती है, तो एक बहुत वक्त जा रहा था उसको सही करने में। तो हम AI को यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है, इसको जल्दी से इस कॉपी को आप फ्रेश कर दें और हम उसको दोबारा देख सकते
1: जी
0: हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास ऑलरेडी एक तस्वीर है,
1: जी
0: उसका कैप्शन है या एक हेडिंग देनी है,
1: जी
0: कुछ वक्त हमें बहुत टाइम लग जाता है हेडिंग देने के लिए, हम उससे जो है चार पांच सजेशन मांग सकते हैं और फिर उसको देख करके एक सजेशन हम ले सकते हैं उसके अंदर। तो इस मामले में माविन हो सकता है। यहाँ पे दिक्कत वहीं आएगा, जो अखलाकी हदूद वहीं आ रहे हैं जहाँ पे हम जो है पूरी तरह उस पर रिलाई हो जा रहे हैं, हम पूरी तरह जो है मुकम्मल या कुल्लिया एतबार कर ले रहे हैं मसनूई ज़हानत पे और जो कुछ वहाँ से आ रहा है, क्योंकि मसनूई ज़हानत भी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ले रही है और वहाँ से कॉपीराइट का मसला पैदा हो रहा है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है OpenAI पे एक बड़ा मुकदमा दायर किया था कि उनके जो है वो लाखों आर्टिकल्स चोरी कर लिए
1: बिल्कुल
0: बगैर इजाज़त के, और
1: बिल्कुल
0: ऐसे बहुत सारे लोगों के, जैसे कल की बात है 1980s के जो चल रहे थे, उसमें यकीनन वो तमाम जो ज़माने के जो स्टार्स थे उनकी तस्वीरों के जो है ऊपर जो है वो आपका चेहरा लग रहा था।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब जो है कह सकते हैं कि अखलाकी तौर पे जो है अगर देखा जाए तो ये कॉपी राइट्स के जो है वो एक कह सकते हैं कि उसकी वायलेशन है या
1: जी।
0: उसकी खिलाफ वर्जी है।
1: तो इसकी जांच पड़ताल कैसे की जाए, कैसे
0: इस पे
1: हम इसको पकड़ पाएंगे?
0: कई एक
1: जी
0: सॉफ्टवेयर इस पे आ गए हैं जिसमें जो है वो AI के जो, जैसे रिसर्च राइटिंग में जो है ये, तो और न्यूज़ राइटिंग में भी, उसमें डालते ही वो कह देते हैं कि ये सब जो है AI जनरेटेड है।
1: यानी AI को पकड़ने के लिए AI
0: ये
1: ही
0: एक बहुत अच्छा
1: चाहिए।
0: आर्टिकल इस पे एक आया है, मैंने पढ़ा, एक अच्छा आर्टिकल ही पब्लिश हुआ था पिछले साल कि हिंदुस्तान में कई एक अच्छी न्यूज़ एजेंसी ने जो है
1: जी।
0: बाज़ाब्ता, अब यह काम बढ़ गया कि दो जर्नलिस्ट इस पर मुकर्रर किए गए हैं कि वो जो AI से लिखी खबरें आ रही हैं वो उसकी निशानदेही करे कि कहाँ कहाँ पे डेटा में गलत हुई है। जैसे बहुत से साइटेशन जो होते हैं, AI सबसे ज़्यादा गलती कहाँ कर रहा है, साइटेशन
1: साइट
0: में।
1: बिल्कुल
0: वो एक नई साइटेशन जो जनरेटिव AI है, जो जहन मसनू से आता है जहनत, वो क्या कर रही है कि साइटेशन जो है, जो रेफरेंस है, जो हवाला जात है, वो खुद से क्रिएट कर दे
1: खुद
0: रही
1: से
0: है,
1: क्रिएट कर
0: और
1: रहे हैं।
0: उनके जो हवाला जात होते हैं वो मुस्तनद किताबें नहीं होती हैं।
2: मैं आपको बताऊं कि
1: जी
2: जैसे कि सिद्दीकी साहब ने बताया कि AI जो है वो रिसर्च भी कर रहा है, सारी
1: बिल्कुल
2: चीजें कर रहा है। आजकल रिसर्च मुझे ऐसा लग रहा है कि AI के जरिए बहुत लोग कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
2: और उसे वो AI ना लगे इसके लिए भी वो AI टूल यूज कर रहे हैं ह्यूमनाइज करने के लिए। आपने देखा
1: बिल्कुल सही
2: होगा
1: कहा।
2: कि वो आपकी जबान में, आप ही की लहजे में उस तरह से बात कर रहा है, ह्यूमनाइज कर रहा है उस चीज़ों को। तो
1: बिल्कुल
2: AI के दौर में डेटा तो आपके पास है,
1: जी
2: लेकिन सहाफी का मेन काम जो है, मकसद जो है, वो ये है कि ये डेटा क्यों है,
1: बिल्कुल।
2: इसकी तलाश
1: और
2: करना,
1: कहां से है,
2: और कहां से है,
1: किसका सोर्स,
2: इसके
1: क्योंकि
2: इसका
1: हाँ
2: सोर्स कहाँ है,
1: जी
2: ये
1: IT एक्ट
2: सारी
1: में भी जो
2: तलाश करना।
1: तब्दीली की गई उसके अंदर भी यही मकसद था कि सिंथेटिक इमेजेस जो हैं,
2: जी
1: जिस
2: जी
1: कंटेंट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए और कहीं
2: जी
1: ना कहीं किसी ना किसी को जिम्मेदार बनाया जाए इस कंटेंट के लिए, और उसको हटाने के लिए भी एक बाकायदा मुद्दत तय की जाए।
2: बिल्कुल
1: क्योंकि
2: जी
1: इस तरह का कंटेंट अगर फैलता रहा तो
2: हाँ
1: हम समाज के अंदर देखेंगे कि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत ज्यादा
2: जी
1: कंफ्यूजन होगा।
2: कंफ्यूजन
1: तो
2: होगा
1: उसको दूर करने के लिए इस तरह, बल्कि अगर हम देखें तो इंडिया AI पोर्टल के जरिए एक कोशिश की गई है बहुत अच्छी, जिसके
2: जी
1: अंदर नौजवानों को AI के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हुकूमत की इस मामले में बहुत अच्छी पहल है।
3: जी बिल्कुल सही कहा। खुर्शीद आलम साहब, तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में डेटा जर्नलिज्म को आम कारी और सामे के लिए काबिल फहम और मौसर बनाने के लिए सहाफी को किन महारतों की जरूरत पड़ सकती है?
2: असल में हमारे पास इत्तला बहुत सारी है, डेटा की कोई कमी नहीं है हमारे पास। और असल में हमारे पास जो मेन चुनौती जो है वो ये है कि डेटा को हम कैसे पढ़ें और उससे आवाम तक हमें कैसे पहुंचाना है।
1: जी
2: सहाफी का जो काम मैं आपको अभी बता रहा था कि उसका काम ही ये है। आप
1: जी
2: देखेंगे जब आप कभी AI पे प्रॉम्प्ट डालते हैं तो आपकी बात से वो एग्री करता है कि हाँ आपने
1: बिल्कुल
2: सही कहा।
1: बिल्कुल
2: आप
1: बिल्कुल
2: अगर उसके डेटा को गलत कहते कि नहीं आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो एग्री करता
1: एग्री
2: है
1: करता है
2: कि हाँ
1: बिल्कुल।
2: मैंने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है और अब मैं इसे दोबारा दे रहा हूं,
1: अच्छा, अपनी दी
2: दोबारा
1: हुई इन्फॉर्मेशन के बाद भी वो नीचे लिखता
2: वो
1: है कि AI गलती कर सकता है,
2: बिल्कुल
1: बराए मेहरबानी से चेक कर लें।
2: हाँ
1: तो ये एक अपने आप में हम लोगों के
2: ये
1: लिए
2: हाँ,
1: एक
2: तो
1: अच्छा
2: पूरी
1: मैसेज
2: तरह से
1: है।
2: हमें डेटा, उस डेटा पर रिलाई नहीं करना
1: नहीं
2: है।
1: करना
2: जैसे कि
1: चाहिए।
2: AI को जो है

0: और हिंदी पढ़ाने वालों में एक नाम जो है वो खालिदा खान का है
1: जी।
0: तो उन्होंने लिखा है कि मैंने उसको जो उर्दू और हिंदी सिखाया है। हाँ। तो जो उनकी जो जितनी उनकी समझ होगी उर्दू हिंदी की वो नहीं समझाया होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब उसके कहीं भी काम हो रहे हैं, लोग अलग अलग लोगों से करवा रहे हैं काम, ये तो अच्छी बात है। नुमान साहब ये बताएं कि एक तरफ AI न्यूज़ रूम के बहुत से काम को आसान बना रही है, दूसरी तरफ खदशा जाहिर किया जा रहा है जैसा भी बता रहे थे कि उसके बाद सहाफत में इंसानी रोजगार के मौके मुतासिर हो सकते हैं। हालांकि अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि नहीं, दो लोग और रखे गए हैं ये चेक करने के लिए कि सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो आप सहाफती मैदान के अमली सूरत हाल को देखते हुए बताइए कि क्या AI सहाफियों के लिए खतरा है या एक नया मौका, और मुस्तकबिल के सहाफी को अपनी बका और तरक्की के लिए कौन सी महारतें और सीखनी होगी और कैसे अपने आप को बेहतर करना होगा।
1: बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मसनूई ज़हानत के ताल्लुक से कि शायद इससे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमेशा सहाफत जितनी तरक्की हुई टेक्नोलॉजी की उतनी सहाफत की रफ्तार बढ़ी है
2: जी।
1: प्रिंट से रेडियो पर आए, रेडियो से टेलीविज़न पर आए, फिर डिजिटल मीडिया पर चले गए हम लोग, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मोबाइल जर्नलिज्म, और अब हम ये मसनूई ज़हानत का दौर भी देख रहे हैं। इसका आंसर भी बातचीत में मिला कि दो लोग और मुकरर किए गए। इसी तरह से सब जगह पर लोगों की तकरीरी हुई है, लोग जानते हैं समझते हैं, लेकिन आने वाला दौर जो है ना इसके अंदर हमें यह समझना होगा कि सहाफत के अंदर तीन लफ्ज मिक्स हो जाएंगे और इन तीन के बगैर गुजारा नहीं है।
2: ओके।
1: मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डेटा प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस।
2: ह्यूमन
1: बगैर इसके आप कुछ नहीं कर सकते
3: हैं, जरूरी है।
1: अब अगर आप इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन टच नहीं देते हैं तो वो जो इसको ले रहे हैं
2: जी
1: सारिफ जो है वो ह्यूमन है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसको अपना एक ह्यूमन एंगल चाहिए,
2: चाहिए, चाहिए।
1: उसको जमीन की रियलिटीज के साथ न्यूज चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: उसको अपनी जुबान में और अपने अंदाज के अंदर खबर चाहिए, और AI ये नहीं जानता है कि आपके यहाँ की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके शहर की, आपके मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज क्या है।
2: बिल्कुल।
1: वो शायद वो आंकड़े आपको दे दे जो उसको अवेलेबल थे इंटरनेट पर, लेकिन एक सहाफी ये जानता है कि जितना कुछ ये बताया गया है मुझे पता है कि 50 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है। वो शायद आपका तजुर्बा हो कि जहां हम मीडिया के बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके पास जाते हैं, तो आप लोग भी, सिद्दीकी साहब आप भी, खुर्शीद साहब आप भी, मीडिया एथिक्स की बात होती है। यही आकर के एक सहाफी जीत जाता है मसनूई जहानत से। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज स्टोरीज लिखते हैं, जब उसको तैयार करके समाज के लिए पेश करते हैं, तो यहां जिसके पास एथिक्स है, उसके पास वैल्यूज हैं, उसके पास सच है, उसके पास हकाइक है, और उसको पेश करने का तरीका है।
2: बिल्कुल, आपने सही फरमाया।
3: मुझे लगता है कि सच्चाई जो है वो ये है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पहले कंप्यूटर आया तो लोगों को लगा कि बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारे लोग काम से निकाल दिए जाएंगे,
1: बहुत अच्छी
3: ये चीजें थी। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है आपको इससे ऊपर काम करना है। अब वो आपके पास टूल्स हैं, आपके इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए टूल्स हैं, आप उससे ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आने के बाद।
2: बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जब भी कोई नई चीज आती है तो अपने साथ कुछ अच्छी चीजें लाती है तो कुछ बुरी चीजें भी लेकर आती है। तो सबसे अहम काम आज ये है कि जो हमारे नए सहाफी हैं उनको सिर्फ सहाफत ही नहीं पढ़ना है बल्कि मशीन को भी पढ़ना है, यानी AI से भी वाकफियत जरूरी है। अगर AI से वाकफियत आपकी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, उसकी गलतियों को आप नहीं पकड़ सकते। जैसा शुरू में आपने कहा था कि AI के गलतियों को पकड़ने के लिए ही AI ही बनाया गया है, लेकिन इन दोनों की गलती को पकड़ने के लिए इंसान खुद मौजूद है। शुक्रिया। अब हम गुफ्तगु के तीसरे और आखिरी दौर में दाखिल हो रहे हैं। सहाफत का मुस्तकबिल सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये एतबार, अखलाकियात जैसा बताया आपने, रोजगार, जबान, इंसानी अकदार और समाजी जिम्मेदारी का भी सवाल है। आज दुनिया भर में न्यूज रूम का तस्वुर बदल रहा है। मोबाइल जर्नलिज्म, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो, डेटा स्टोरी, न्यूज लेटर, सिटीजन जर्नलिज्म और AI से तैयार होने वाला मवाद सहाफत के लिए नए इम्कान पैदा कर रहा है। तो क्या हम एक ऐसी सहाफत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अखबार की जगह प्लेटफॉर्म, खबर की जगह डेटा और पोर्टल की जगह एल्गोरिदम ले लेगा, या मुस्तकबिल की सहाफत टेक्नोलॉजी और इंसानी ज़हानत के इश्तराक से एक ज्यादा मजबूत सहाफत होगी? जामियात सहाफत के मुस्तकबिल के सहाफी तैयार करती है, लेकिन सहाफत की दुनिया जिस रफ्तार से तब्दील हो रही है, क्या हमारे मौजूदा तालीमी निसाब भी इसी रफ्तार से तब्दील हो रहे हैं? तो डॉक्टर अब्दुल कादिर सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में सहाफत की तालीम में डेटा, AI, डिजिटल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए किन बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है?
0: ये काफी अच्छा आप

0: जो है वो सवाल पूछा है, और यकीनन इस वक्त जो है चूंकि मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ,
1: जी
0: हम जो है हर साल जो है सिलेबस को अपडेट करते हैं हर एक BOS में, और
1: जी
0: हमने डिजिटल मीडिया जो है वो हमने जो है वो 2 सेमेस्टर लगातार उसको पढ़ाते हैं, 3 सेमेस्टर तक,
1: जी
0: ताकि जो चीज़ें कमिटेड है वो आगे तक उसको और एडवांस लेवल पर ले जाते हैं।
1: जी
0: और इसमें कह सकते हैं कि जैसे जिस तरह की तब्दीली आई है उसे, सपोज जैसे आप मान लें सहाफत में अगर बात करें तो उसमें कई तरह की सहाफत होती है, अगर मान लिया डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप,
1: जी
0: बहुत से जो है चीज़ें हैं आप फोट नहीं है, तो एक फोटो हमने डाला AI से, हमने कहा कि इसको मुकम्मल करने के लिए उनकी दीवारों को जो है उसी पे जो है एक अंदाज करते हुए,
1: जी
0: तो जहां जहां पे हमें फोटोज नहीं मिल रहे थे तो वो वहां पे वो क्लियर कर दे रहा
1: वो
0: है,
1: आपको मिल गई
0: एक
1: जी
0: बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। अहम बात यह है कि अखलाकी अकदार जो है सहाफत की वो न मरने पाए, उसका भी खास ख्याल रखा जाता है, बच्चों के जहन नशी कराया जाता है। इस मामले में मेरे ख्याल में गांधी जी ने जो कहा था कि हिंदुस्तान की आवाम सहाफत पे ऐसे ही यकीन करती है
1: जी
0: जैसे कि गीता और कुरान पे।
1: खुर्शीद आलम साहब, जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि एतमाद बड़ा चैलेंज है,
0: बहुत
1: कि
0: ज़्यादा
1: आज सहाफत के सामने एक बड़ा चैलेंज एतमाद का बहरान ही है। फेक न्यूज़, डीप फेक, जैसा आपने बात की थी, मस्नूई तस्वीर और AI से तैयार करदा मवाद ने ये सवाल पैदा कर दिया है कि आम आदमी सच और झूठ में फ़र्क कैसे करे। आपके ख्याल में मुस्तकबिल की सहाफत में एतमाद और साख को बरकरार रखने के लिए सहाफ़ी मीडिया इदारों और तालीमी इदारों को क्या किरदार अदा करना होगा?
2: मेरे नज़दीक सहाफ़त का मुस्तकबिल ना तो सिर्फ डेटा है,
1: जी
2: ना सिर्फ AI, और ना ही सिर्फ इंसान है।
1: जी
2: मुस्तकबिल इन तीनों के सही कहें कि इम्तिजाज़ में है। डेटा हमें हकीकत के करीब लाता है और AI हमें तेज़ और बेहतर बना रहा है, लेकिन उस हकीकत को समझना, उसकी तहकीक करना और उसे ईमानदारी के साथ आवाम तक पहुंचाना, ये एक सहाफ़ी की ज़रूरत भी है। और सिद्दीकी साहब ने बताया कि सहाफ़ियों को सिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, और मैं बताऊं कि मैं भी कहीं कॉलेज में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उन्हें AI जो
1: जी
2: प्रोग्राम्स हैं,
1: जी
2: हमने एक कोर्स शुरू किया जिसमें AI पावर्ड जर्नलिज्म है। हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उसमें डेटा उन्हें कैसे सर्च करना है,
1: जी
2: वीडियो आजकल देखते हैं आप जो वीडियोस हैं आजकल एडिटिंग AI से हो जाती है,
1: बिल्कुल
2: सारी
1: बिल्कुल जी
2: चीज़ें हो जाती हैं। बाकायदा आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और उसमें वो इमेजेस भी बना देता है, उसमें
1: बिल्कुल
2: वीडियोस भी बना देता है। तो किस तरह से सहाफत जो है वो AI के जरिए हो रही है, किस और किस क्रेडिबिलिटी के साथ आपको करना है ये सारी चीज़ें, उस कोर्स में हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्तकबिल जो सहाफत का है वो उरूज पर है और आगे रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरत ये है कि क्रेडिबिलिटी, जो मैंने पहले भी कहा था,
1: जी
2: कि वो बनाए रखें,
1: वो बनाए
2: डेटा
1: रखें
2: जो
1: जी
2: आपने आपके पास है
1: जी
2: उसे वेरीफाई जरूर कर
1: जरूरी
2: लें।
1: है वो करना जी। बहुत शुक्रिया आपका। नुमान साहब, आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर हम आज से 10 या 15 बरस आगे की सहाफत का तस्वुर करें तो आप उसे कैसा देखते हैं? क्या मुस्तकबिल का सहाफ़ी सिर्फ खबर लिखने वाला होगा, या उसे डेटा एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, वीडियो क्रिएटर, तहकीककार या कहानीकार, या सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा? और इस पूरे मंजरनामे में इंसानी सहाफ़त की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने किया और उसका आपने जवाब भी दिया कि ये सब उसको होना होगा।
1: जी
2: तो इस तरह से, क्योंकि आपने कहा कि उसको लिखने वाला, तो ये लिखने का काम भी अब चला गया है उसके हाथ से, तो अब उसको सिर्फ चेक करना है।
1: अब सिर्फ चेक
2: पहले
1: करना।
2: कॉपीराइट होता था, अब कॉपी एडिट हो जाती है, तो वो भी अब उसके पास से चला गया है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से हमारे दोनों साहिबान ने बताया कि अब ये कोर्स का हिस्सा हो गया है और ये जितने भी स्टूडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं अब ये उनके लिए लाजमी है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हुए चलें। जैसे किसी वक्त में कंप्यूटर के ताल्लुक से ऐसे ही सवाल किया गया होगा जैसे आप इस वक्त कर रहे हैं कि अब ये कंप्यूटर आ गया, अब जो ये लोग स्टोरीज लिखते हैं, जो खबरें लिखते हैं, इनका क्या होगा। लेकिन आज भी उसी तरह से लिखी जा रही हैं और दायरा बहुत तेजी से सहाफत का बड़ा है,
1: देखिए, मैं
2: क्योंकि
1: अपना
2: हमने हमने ये देखा कि जो लोग प्रिंट में थे अभी तक आप उनको आज देखते हैं कि उनकी शॉर्ट वीडियोस सामने आ जाती हैं बहुत तेजी से, और वो कभी कभार उनके प्रिंट से ज्यादा तेजी
1: बिल्कुल
2: से बढ़ रही होती हैं। तो आज का जो सहाफी है उसके सामने चैलेंजेस तो हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ दायरा बहुत बड़ा है। आज का सहाफी बहुत कुछ सीख रहा है आगे के लिए,
1: जी
2: रास्ते जो हैं वो बाकायदा
1: जी
2: लंबे तो रहे हैं,
1: जी
2: लेकिन ये जरूरी है कि आज मस्नूई जहानत ने उन रास्तों को आसान भी किया है,
1: बिल्कुल सही
2: इसमें कोई
1: फरमाया,
2: शक नहीं है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने कि रास्ते लंबे रहे हैं और लंबे रास्ते ही कामयाबी के जामिन होते हैं। अगर शॉर्टकट का आपने इस्तेमाल किया तो तो आप कहीं भटक जाए।

आएंगे, रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शायद मुस्तकबिल की सहाफत वो नहीं होगी जिसमें इंसान और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के मुकाबले खड़े हों, बल्कि वो सहाफत होगी जिसमें इंसानी ज़हानत और मसनूई ज़हानत एक दूसरे के मुआविन बने। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर एकियू सिद्दीकी साहब, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब और मोहम्मद नौमान।

बहुत शुक्रिया आप सभी का। शायद मुस्तकबिल की सहाफत वो नहीं होगी जिसमें इंसान और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हों, बल्कि वो सहाफत होगी जिसमें इंसानी जहानत और मस्नूई जहानत एक दूसरे के मुआविन बने। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर एकीयू सिद्दीकी साहब, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब और मोहम्मद नौमान हाशमी साहब। आपने नहायत अहम और फिक्र अंगेज नुकात हमारे सामईन के सामने रखे। सामईन, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफी।

बहुत शुक्रिया आप सभी का। शायद मुस्तकबिल की सहाफत वो नहीं होगी जिसमें इंसान और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हों, बल्कि वो सहाफत होगी जिसमें इंसानी जहानत और मस्नूई जहानत एक दूसरे के मुआविन बने। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर एकीयू सिद्दीकी साहब, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब और मोहम्मद नौमान हाशमी साहब। आपने नहायत अहम और फिक्र अंगेज नुकात हमारे सामईन के सामने रखे। सामईन, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। तो सामईन कराम, इसी उम्मीद के साथ कि हम बदलती हुई दुनिया को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, सवाल करेंगे और अपने अंदाज नजर को वसी करेंगे कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए मौजूदात और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।

0: तड़प जीव जासी ऐसी लगन लगा।
1: 听众朋友们，请收听 MS 苏巴 Lakshmi 唱的一首《山歌》。

就방금은接下来我们播送乌沙的长的泰米尔邦的一首明天歌曲，请你们唱出。

对。印度的李广福电台新闻要点报告完了。听众朋友们，今天我们的普通话节目播送到这里，谢谢收听，我们再会。

0: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विजेता चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं आज इस कार्यक्रम में
1: हिम्मत सिंह नेगी। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।
0: तो चलिए आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में क्या कुछ हमारे श्रोता सुनने वाले हैं इसके बारे में बता देते हैं। तो भाई सबसे पहले बात होगी एशियन गेम्स की कि कौन कौन से गेम्स में क्या क्या हमें हासिल हुआ है, कहाँ मायूसी हाथ लगी है और कहाँ हमारी आंखों से खुशी के आंसू झलके हैं
1: जी। और दूसरी तरफ जो सुब्रतो कप अंडर 17 बॉयज का फाइनल मैच है उसका पूर्वावलोकन भी करेंगे और जानेंगे कि अभी सुब्रतो कप मैच में क्या चल रहा है।
0: शतरंज की दुनिया का भी हाल देखेंगे, फीडे 46 का जो संस्करण चल रहा है उसके बारे में भी, कुछ नई गतिविधियां क्या हुई है इसके बारे में जानेंगे।
1: और विजेता इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए की महिला और पुरुष टीमों के क्रिकेट मैच पर भी हम जानकारी लेंगे और साथ ही जानेंगे अन्य खेल समाचार।

0: आइए सबसे पहले एशियन गेम्स 2026 में कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से खेल स्पर्धाओं में परचम लहरा रहे हैं और कहां पर हमारे हाथ मायूसी लगी है, इस बारे में सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: A game of speed, skill and spirit, where every
0: एशियन गेम्स 2026 में छठवें दिन खेले गए सभी मुकाबलों पर आइए डालते नजर, जानते हैं किस खेल में खुशी के आंसू निकले और कहां मायूसी हाथ लगी। सबसे पहले बात करते हैं वुशु की। भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। जापान के नागोया में खेले गए फाइनल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये रोशिबिना देवी का एशियन गेम्स में तीसरा पदक है। उन्होंने 2023 में हांगझाऊ एशियन गेम्स में रजत और 2018 जकार्ता पालेमबांग एशियन गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया था। चलिए हम नजर डालते हैं हॉकी पर। भारत ने एशियन गेम्स के ग्रुप स्टेज के तीसरे मुकाबले में साउथ कोरिया को 8-2 से हरा दिया। चार बार की चैंपियन साउथ कोरिया के खिलाफ ये भारत की एशियन गेम्स में सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ भारतीय मेंस हॉकी टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत की ओर से अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने 2-2 गोल किए। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और साउथ कोरिया पर दबाव बनाए रखा। भारत ने पहले क्वार्टर के चौथे मिनट में ही बढ़त बना ली थी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 14वें मिनट में अभिषेक ने भारत के लिए चौथा गोल किया और भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में ही मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने दबदबा बनाए रखा। दिलप्रीत सिंह ने 26वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त 5-0 कर दी थी और तीसरे क्वार्टर में 32वें मिनट में दिलप्रीत ने अपना दूसरा गोल दागा। अभिषेक ने 38वें मिनट में दूसरा गोल किया। इससे भारतीय टीम को 7-0 की मजबूत बढ़त मिल गई। 7 गोल से पिछड़ने के बाद साउथ कोरिया ने वापसी की कोशिश की। किम जोई ने 42वें मिनट में गोल करके साउथ कोरिया का खाता खोला। इसके बाद किम योंग बोक ने 52वें मिनट में दूसरा गोल किया। हालांकि तब तक मुकाबला भारत के नियंत्रण में हो चुका था। मैच के आखिरी मिनट में राजेंद्र सिंह ने गोल किया। इस गोल के साथ भारत ने जीत का अंतर 8-2 कर दिया। आइए बात करते हैं कबड्डी की। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने चीनी ताइपे को 37-21 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपने ग्रुप चरण का शानदार अंत करते हुए चीनी ताइपे को 37-21 से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में 4 में से 4 मुकाबले जीत कर शीर्ष पर रहा। अब भारतीय टीम शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। पहले ही अपनी शुरुआती 3 ग्रुप मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह और पदक पक्का कर चुके भारत ने चीनी ताइपे के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने मजबूत डिफेंस के साथ मुकाबले की शुरुआत की। पहले हाफ के खत्म होने से पहले भारत 23-11 से आगे था। दूसरे हाफ में देवांग दलाल और अयान लोचप जैसे खिलाड़ियों को भी मैदान पर उतारा गया। दूसरे हाफ में भारत ने अपनी बढ़त को लगातार मजबूत किया और एक और ऑल आउट दिया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार चौथी जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय टीम ने मेजबान जापान और दक्षिण कोरिया समेत अपने अन्य ग्रुप मुकाबलों में भी शानदार जीत हासिल की थी। भारत पुरुष कबड्डी में एशियन गेम्स का रिकॉर्ड 8 बार का चैंपियन है। भारत ने इस खेल के एशियन गेम्स में शामिल होने के बाद हर संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है, सिवाय 2018 जकार्ता एशियन गेम्स से, जहां ईरान ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। उम्मीद है कि इस बार भी भारत की झोली में कबड्डी से एक स्वर्ण पदक आ जाएगा। भारत के लिए इससे बेहतर दिन की शुरुआत नहीं हो सकती थी। भारत ने रोइंग में मेडल जीत लिया है। भारतीय जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल्स कल स्पर्धा के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। सतनाम और सलमान की भारतीय जोड़ी ने 2000 मीटर की रेस 6:13.25 में पूरी की और तीसरा स्थान पाकर पोडियम फिनिश किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियन गेम्स में पुरुषों की डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता। ये इस जोड़ी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पूर्व हैंडबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह और भारतीय सेना से जुड़े सलमान खान दोनों का रोइंग तक पहुंचने का सफर काफी प्रेरणादायक रहा। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर बनी रही, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर खिसक गई। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेताओं से 3:88 पीछे रही। खेलों की अपडेट में बात करते हैं शूटिंग की। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन, भारतीय शूटर्स फाइनल में जगह नहीं बना सके। शीर्ष 8 निशानेबाजों को ही फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। वहीं स्कीट मिक्स्ड टीम भारत की जोड़ी परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह नारूका ने क्वालिफिकेशन में 138 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई। शीर्ष 4 देशों को ही फाइनल में प्रवेश मिलना था, इसलिए टीम इंडिया ने मेडल राउंड में ही अपनी जगह पक्की कर ली। भारत की अनंतजीत सिंह नारूका और परिनाज धालीवाल ने आज एशियन गेम्स के मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 44 अंक हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की जोड़ी ने 6 सीरीज के दौरान लगातार सुधार किया। पहली सीरीज में 7 अंक से शुरुआत करने के बाद उनका स्कोर क्रमशः 14, 21, 29, 36 और 44 रहा। 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। गेम्स के इतिहास में इंडिया को इस इवेंट में पहली बार मेडल मिला है। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग का 8वां मेडल है। इनमें 4 सिल्वर और 4 ब्रोंज शामिल है। वहीं अब रुख करते हैं स्क्वैश खिलाड़ियों की तरफ। तो अभय सिंह और वी चोटरानी ने आज जारी एशियन गेम्स 2026 में पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अभय सिंह ने श्रीलंका के रविंदु लक्सीरी को सीधे 3-0 से हराया। उन्होंने ये मुकाबला 11-3, 11-5, 11-6 के स्कोर से महज 21 मिनट में अपने नाम किया। वहीं वीर चोटरानी को मलेशिया के संजय जीवा के खिलाफ मुकाबले में कड़ी चुनौती मिली। वीर ने वापसी करते हुए स्कोर 7-7 से बराबर किया और दूसरा गेम 11-9 से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में संजय ने 11-8 से जीत दर्ज कर मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में वीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11-6 से जीत हासिल की और मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके अलावा भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने भी एशियन गेम्स 2026 की महिला एकल स्क्वैश स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की। तो भारतीय बॉक्सर परवीन हुडा एशियन

0: गेम्स की राउंड ऑफ 16 में बिना मुकाबला के लिए जीत गई हैं। तजाकिस्तान की मलिका नोजीमोवा ने उन्हें वॉकओवर दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नवबखोर हमीदोवा से होगा। और आइए बात करते हैं तैराकी की। टोक्यो में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय तैराकों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। पेनिंगटन रोहित पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से महज 0.09 सेकंड से चूक गए। वहीं भारतीय पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम भी फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। भारत के पेनिंगटन रोहित ने पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में संयुक्त रूप से 12वां स्थान हासिल किया। उन्होंने 23.87 सेकंड का समय निकाला। फाइनल के लिए 8 तैराकों को क्वालिफाई करना था। सिंगापुर के सेन वेई ट्योंग ने उन्होंने 23.87 सेकंड का समय निकाला। फाइनल के लिए 8 तैराकों को क्वालिफाई करना होता है। सिंगापुर के सेन वेई ट्योंग ने 23.78 सेकंड के समय के साथ 8वां और अंतिम क्वालिफाइंग स्थान हासिल किया। इस तरह रोहित फाइनल में पहुंचने से सिर्फ 0.09 सेकंड पीछे रह गए। रोहित फाइनल के लिए दूसरे रिजर्व पर हैं। अगर क्वालिफाई करने वाले 2 तैराक अपना नाम वापस लेते हैं तो उन्हें फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता है। भारत की पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम अपनी हीट में अंतिम स्थान पर रही। टीम ने कुल मिलाकर 12वां स्थान हासिल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। वहीं आर्यन नेहरा ने पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल बी में 3रा स्थान हासिल किया। तो ये तो थी झलकियां एशियन गेम्स के बारे में, और एशियन गेम्स का रुख दोबारा से करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन अभी फिलहाल सुब्रतो कप का क्या है आगाज करने का सिलसिला उसके बारे में बता रहे हैं हमारे साथी हिम्मत जी।
1: जी विजेता, नई दिल्ली के डॉक्टर बीआर अम्बेडकर स्टेडियम में 65वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के जूनियर बॉयज अंडर 17 कैटेगरी का ग्रैंड फिनाले आज खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में केरल और CISCE की टीमें आमने सामने होंगी। CISE की टीमें पूरे टूर्नामेंट में अजय रही हैं। उन्होंने असम को 3-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। इससे पहले ग्रुप स्टेज और क्वार्टर फाइनल में भी टीम ने छत्तीसगढ़ को 8-0, जम्मू कश्मीर को 7-0 और गुजरात को 4-0 से मात दी थी। तो विजेता, देखिए किस तरह से ये टीम लगातार अजय टीम की तरह उभर रही है और एक भी गोल अपने खिलाफ होने नहीं दे रही है, तो ये उसकी दक्षता को दर्शाती है। तो दूसरी तरफ केरल की टीम ने भी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है और नॉकआउट चरणों को बहुत सुंदर तरीके से पार किया है और आज खिताबी जंग में जगह बनाई है, और ये रोमांचक मुकाबला अभी थोड़ी ही देर में खेला जाएगा डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेडियम में, और देखना है कि इसमें कौन सी टीम विजेता बनकर उभरती है। लेकिन ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, सभी की नज़रें इस मुकाबले पर लगी हुई हैं। थोड़ी देर में हम लोग अपने सभी श्रोताओं को इस मैच की लाइव अपडेट भी देते रहेंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी ये मुकाबला देखने वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी थोड़ी ही देर में ये मुकाबला शुरू होने वाला है।

बात लगी है उन पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं ई स्पोर्ट्स की। तो भारत की पारितोष पुओपो चैंपियंस प्रतियोगिता के अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। पारितोष ने मंगोलिया के मुख जोरिंग गनबोल्ट को 3-0 से और सिंगापुर के मुनजुन जस्टिन कोह को 3-2 से हराया। उसके बाद उन्होंने चीनी ताइपे के ज्यू आंगकुओ से 3-0 और थाईलैंड के तारा राक के से 3-2 का हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा। बात करते हैं कैनो स्प्रिंट की। तो पार्वती और प्रसन्ना ने मिक्स्ड कयाक डबल्स 500 मीटर सेमीफाइनल्स के क्वालिफाई कर लिया है और भारत की पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार ने अपनी हीट में 1:52.676 मिली सेकेंड समय देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब ये भारतीय जोड़ी मेडल तय करने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगी। बात कर लेते हैं फेंसिंग की, यानी कि तलवारबाजी की। भवानी देवी और श्रेया गुप्ता वुमेन्स सेबर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की भवानी देवी और श्रेया गुप्ता, जिन्हें पहले राउंड में बाई मिला था, वुमेन्स सेबर इंडिविजुअल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ओलंपियन भवानी देवी ने शुरुआती राउंड में मंगोलिया की ओलेन को 15-8 से हराया और अब उनका मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन की सिल्वर मेडलिस्ट राव जुई से होना है। भारत की महिला कबड्डी के बारे में भी थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान के खिलाफ हाफ टाइम तक 32-13 की बढ़त बना ली थी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट किया और ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने की ओर बढ़ी रही। एथलेटिक्स की अगर बात करें तो अनिमेश कुजूर पुरुषों की 100 मीटर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीसरे स्थान पर रहते हुए पुरुषों की 100 मीटर सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 10:36 का समय दर्ज किया और सेमीफाइनल मुकाबला कल होने वाला है। 7 स्पर्धाओं में 3 के बाद पूजा अनामिका और 8वें और 9वें स्थान पर रहीं। भारत की पूजा ने हेप्थलॉन के शॉटपुट में 11.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765989670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwan.
1: Dr. Ramesh Kumar Jajoria aur inka pura parivar.
2: जी हाँ, और करनाल हरियाणा से हैं विजेंद्र कुमार जयजान, उनका पूरा परिवार, और उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और उनका पूरा परिवार, और पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोरा और उनका पूरा परिवार।
1: धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से फरमाई भेज रहे हैं निशार सलमानी और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे भाई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं मुकेश शर्मा, उनका पूरा परिवार। गांव नथाना पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं हरजिंदर सिंह छिंदा, उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में यह है लखनादौन जिला सिवानी मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं भाई लाडला जी चौबे और इनका पूरा परिवार। तो सुनते हैं सभी की फरमाइश पर अमित कुमार यशपाल की आवाज में ये रागनी।

0: तो अभी हमारे भाई सुन रहे थे यशपाल की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था चंद किरण का।
1: जी
0: और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं बदन सिंह और कल्याण सिंह, और इनके लिए भी हमारे पास

0: से फरमाइश भेज रहे हैं राजेश खोबर खेड़े और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप और इनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है बेहरवाला खुर्द सिरसा से भेजने वाले हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह तराड और इनका पूरा परिवार।
1: और मेरे पास है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार। और छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया और उनका पूरा परिवार। और जिला हिसार से हैं राजकुमार डुंडी और उनका पूरा परिवार। और ये है मेरे पास मुल्तानी ढांगा पहाड़गंज से अनिल मोहर और उनका पूरा परिवार।
0: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं पीएस नाहवकर और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है खुर्जा उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास आई है आसाम से भेजने वाले हैं हितेंद्र दास और इनका पूरा परिवार। जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास आई है सूरतगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से भी हमारे फरमाइश आई है भेजने वाले हैं जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम पंचायत बढ़ेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा और इनका पूरा परिवार। गांव खोखरावली श्री गंगानगर से फरमाइश भेज रहे हैं विनोद बारसा और इनका पूरा परिवार। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं साहजी बोड़खे और इनका पूरा परिवार।
1: बिल्कुल। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से हैं ओम प्रकाश और उनका पूरा परिवार। और गाजीपुर से हैं प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर बदन सिंह और कल्याण सिंह की आवाज में ये रागनी।

0: तो वंदना बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे बदन सिंह और कल्याण सिंह से, ये रागनी और किस्सा था भाई दुष्यंत शकुंतला का। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायान की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जयकुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स्ड टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
4: नमस्कार।
3: और जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे बार बार कहते हैं कि भाई आप खेती बाड़ी के साथ साथ और बहुत सारे काम हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़े और लागत है वो

0: कम आए। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों हमारे भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों से पुरानी परंपरा है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है।
1: आज हम बात करेंगे खेती के साथ साथ उस काम की भी जो लाखों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी का सहारा है, पशुपालन और डेयरी। जरा सोचिए, सुबह का समय है, पशुपालकों ने दूध दुहा और दूध से भरी हुई बाल्टी लेकर कलेक्शन सेंटर की ओर चल पड़े। लेकिन असल में शशि, दूध की असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि दूध की क्वालिटी, उसकी टेस्टिंग, समय पर चिलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फिर मार्केट तक उसकी पहुँच, इन सभी कड़ियों का मजबूत होना डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा कोमल आपने, और इसीलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में हम अपने किसान बहन भाइयों को बताएं तो ये भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और

0: क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा कोमल आपने, और इसीलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में हम अपने किसान बहन भाइयों को बताएं तो ये भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और

0: फलों की तुड़ाई हो चुकी है, और उसके बाद कुछ ऐसे समसमय कार्य होते हैं जिनको करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो अगली फसल है उनको अच्छी मिले, उसका दाम भी अच्छा मिले। तो फलों की तुड़ाई के बाद वो अपने बाग का प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं होती हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चवलेश कुमार, आप वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जब फल बाग से निकल करके बाहर चले गए हैं मार्केट की तरफ, तो उसके बाद भी आपको अपने बागों का प्रबंधन बनाए रखना है।
2: जी, जैसे यह मानवीय प्रवृत्ति है कि हम एक बार फल तोड़ते हैं तो अपने बागों को, अपने खेतों को थोड़ी देर के लिए हम अनदेखा कर देते हैं जब तक नई फसल ना आए। मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहता हूं कि जितना हमने फूल आने से लेकर फल लगने और फल लगने के बाद उसके तुड़ाई में जितना हमने देख रेख किया है, उतना ही देख रेख हमें फल की तुड़ाई के बाद भी अपने बागों की करनी है, क्योंकि यह समय होता है अपने बाग को अगली फसल के लिए तैयार करने का। और यदि हम इसमें अनदेखा करेंगे तो हम अगला जो फसल है शायद जो पिछली फसल है उसकी तुलना में हम कम ले पाए। इसलिए फल उत्पादन या फल की तुड़ाई के बाद भी हमें बागों का बहुत ही अच्छा प्रबंधन करना है। और इसमें बहुत सारी फसलें हैं हमारे, जैसे उत्तरी भारत, तो जैसे आम, आम हमारी प्रमुख फसल है जिसकी तुड़ाई हो चुकी है, हमने लगभग जुलाई तक अपने आम को तोड़े हुए हैं। अब हमारी जो बाग है या आम के पेड़ है वो अगली फसल के लिए तैयार हो रही है। तो मैं किसान भाइयों को यही बतलाना चाहता हूँ कि ये समय है कि अपने पेड़ों को, अपने फल के पेड़ों को, और या समुचित रूप में बोलूं तो ये बागों को हमें ऐसा बनाना है कि ये टिकाऊ उत्पादन करे या एक सस्टेनेबल फ्रूट प्रोडक्शन करे, जिसमें दोनों चीजों, एक तो बोलते हैं उपज और दूसरी है गुणवत्ता। जिन किसान भाइयों ने अभी तक न्यूट्रिशन, जो हम बोलते हैं खाद, खाद नहीं डाला है अपने खेतों में, तो वो खाद की एक समुचित मात्रा जरूर उपयोग करें, जिसमें हम बोलते हैं कि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, आजकल केचुए की खाद का भी उपयोग बढ़ा है। तो जैसे भी आपकी उपलब्धता हो, आप 15 से 20 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें, और साथ ही साथ कुछ जैसे फर्टिलाइजर बोलते हैं कि जो इमिडिएट रूप में पौधों को प्राप्त हो सके, तो इसके लिए एक निर्धारित मात्रा है, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं पेड़ों के लिए 50 ग्राम और 100 ग्राम, ये जो नत्रजन है, फास्फोरस है और पोटास की मात्रा है, इसमें हम एज वाइज बढ़ाते हैं और ये 10 साल में जाके एक फिक्स हो जाता है, जो बोलते हैं कि 1 किलो नत्रजन, 1 किलो पोटास और 500 ग्राम फास्फोरस के रूप में ये फिक्स होता है। तो 10 साल के बाद हम उसी को उस रेट से नहीं बढ़ाते, और 10 साल के ऊपर जो पौधा है उसमें ये फिक्स मात्रा में हम डालते हैं। और इसके डालने की यह विधि की पहले पौधे की कैनोपी को अच्छे से देख लें, और जितने भी हमारे खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं, उसको डालते समय ये ख्याल रखना है कि पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें तने पे खादों का उपयोग नहीं करना है, तनों से समुचित एक दूरी बना ले। जैसे अपने एक पैर का एक उदाहरण बताता हूँ कि वहाँ पे हम स्केल नहीं ले जा सकते, तो अपने पैर को रखें जहाँ हमारा उंगली हो और लास्ट टो हो, तो वहां से आप शुरू करें। ऐसा नहीं कि तने पे हम खाद या फर्टिलाइजर का उपयोग करें, और हल्की खुदाई करके उस खाद को और उर्वरक को आप उपयोग करें। और ख्याल रखें कि जैसे बारिश का सीजन है तो बारिश ठीक है, लेकिन जैसे ही हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी का उपयोग जरूर करें। जैसे हमने खाद दिया और उर्वरक दिया, उसके बाद पानी जरूर डालें पौधों में।
1: डॉक्टर साहब आपने बताया कि बागों का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे किसान जो हैं आने वाली फसल के लिए तैयारी कर सकें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि बाग में सूखी शाखाएं पड़ी होती हैं, रोगग्रस्त प्लांट जो हैं उनके भी पार्ट्स कई बार बाग में ही रह जाते हैं, तो तुड़ाई के बाद जो बगीचे की साफ सफाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी है?
2: यह बहुत ही नितांत आवश्यक है। जैसे हम बोलते हैं ना, घर में सैनिटेशन, साफ सफाई, ये रोगों को नहीं लाता है ना, तो उसी प्रकार हम अपने बागों की साफ सफाई करें। तो सड़े गले फल क्या होते हैं कि बहुत सारे कीड़ों को बुलाते हैं, बहुत सारे बीमारियों को बुलाते हैं। यदि हम उसको वैसे ही छोड़ दें, जैसे आपको बताना चाहूंगा कि आम में, अमरूद में बहुत सारे फ्रूट फ्लाई होते हैं, यदि हम वैसे छोड़ दें तो उसमें जो कीड़ों की संख्या पनपने लगेगी। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, जब भी आप बिना देरी किए हुए जितने भी आपके फल सड़े हुए रहे होंगे या जो गिर गए होंगे उनको आप तुरंत ही, जैसे कोई फल गिर गया हो जो आपके बाजार के लिए आपके खाने के लिए उपयोगी ना हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कीड़े हैं या बीमारियां हैं, उसको आप तुरंत ही बागों से हटाए और एक दूरी पे ले जाकर या तो बड़ा गड्ढा तैयार करे और उस तैयार गड्ढे में उसको बिल्कुल ले जाके आप मिट्टी में दबाना शुरू कर दे। और ये जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी करना है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना है। दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात

0: तरह की टहनियां जिसमें बीमारियों का अंदेशा होता है या जिसमें कीड़े हैं, हमें ये ज्ञात होता है कि ये शाखाएं अच्छे नहीं चल रही हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी आपको लग रहा है कि सूखी डालियां हैं या आपको लग रहा है कि ये टहनी अच्छे से बढ़ नहीं रही है, उसके पत्ते अच्छे हरे नहीं है, तो वैसे टहनियों को आप एक नियमित लेंथ पे कट करें, जहां से वो हेल्दी ना लगे उस पूरे ब्रांच को आप कट कीजिए। काटने के बाद उसमें एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके फफूंद नाशक दवाई है, उस दवाई को एक पेस्ट, जैसे हम सिंपल तरीके से हम बोलते हैं कि पहले हमारे पास एक पेस्ट आता था, उसको पाउडर फॉर्म में होता, तो हम जैसे उसको पेस्ट बना के ब्रश करते थे, वैसे उसको पेस्ट बनाना है और उसको ब्रश में लगा के उस कटे हुए भाग में पूरी तरह लेप लगाना है। इससे
1: जी
0: क्या होगा,

0: नुकसान पहुंचे, पेड़ों को नुकसान पहुंचे, और फल की तुड़ाई के बाद जो प्रूनिंग है वो किस वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिए और किन शाखाओं को हटाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
1: एक इसेंशियल हम बोलते हैं कि जब भी बागों की बात आती है तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो शब्द हैं। तो ट्रेनिंग में एक क्या होता है कि ट्रेनिंग हम इंसानों में या अपने सर्विसेज में भी बात करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम पौधों को भी ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उनको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना जिससे आगे चल के चाहे आम का पौधा हो, अमरूद का पौधा हो, नींबू का पौधा हो, ये अपना इतना आधार बना ले कि जो भी फल लगे उसको अच्छे से सहन कर पाए।
0: जी
1: यदि हम ट्रेन अच्छा नहीं करेंगे पौधों को तो उनकी बढ़वार किसी भी दिशा में जा सकती है, उनका आकार, उनका फ्रेमवर्क इतना अच्छा नहीं हो पाएगा कि वह फलों के भार को सहन कर पाए।
0: जी
1: तो इसमें क्या होता है कि यदि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई तो आपका जो रो टू रो है, प्लांट टू प्लांट का जो एक स्पेस देते हैं वो मेंटेन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, वो कोई भी दिशा में चलेगा जिसमें मशीनी करण, आजकल ट्रैक्टर चलाना है और बहुत सारे मशीनीकरण का उपयोग करते हैं अपने बागों में, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग हम इनिशियल ईयर में करते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 साल तक एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो सभी चारों दिशाओं में शाखाओं को बढ़ाना, 1 मीटर की दूरी पे पेड़ को कट करना ताकि सभी शाखाएं चारों दिशा में अच्छे से फैल जाए, तो ये ट्रेनिंग का आधार है। दूसरा जो हमारा विषय है प्रूनिंग, प्रूनिंग हमें पौधों की प्रजाति या फसल के आधार पे निर्धारित करता है। जैसे आम है, आम में बहुत ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं में जो फूल लगते हैं वो पुराने शाखाओं में हम बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकली मैच्योर शाखाओं में आते हैं, जिसके लिए 8 से 9 महीने की मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। तो आम में किसान भाइयों को बहुत ज्यादा प्रूनिंग की जरूरत नहीं है, प्रूनिंग उन शाखाओं को करनी है जो छाया दे रही हो। तो मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि उन शाखाओं को निकालें जो एक दूसरे के ऊपर आके वहां छाया उत्पन्न कर रही हो, कि ऐसे शाखाओं को निकालना है जो वो अंधकार सा बना रहा हो, उसको हटाना है ताकि वहां पूरी तरह अच्छे से जो सूर्य की किरणें पहुंच पाए। जैसे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी वहां पे जो कीड़े और बीमारियों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट निर्मित हो रहा है वो हटता है, इससे हम इन चीजों से निजात पाते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल निकालते रहना, और दूसरी कि जो नीचे जमीन से लगी हुई शाखाएं उनको भी बिल्कुल निकालना, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है, उसको नहीं निकालेंगे तो

तो सूर्य की किरणें पहुंच पाए। जैसे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी वहां पे जो कीड़े और बीमारियों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट निर्मित हो रहा है वो हटता है, इससे हम इन चीजों से निजात पाते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल निकालते रहना, और दूसरी कि जो नीचे जमीन से लगी हुई शाखाएं उनको भी बिल्कुल निकालना, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है। उसको नहीं निकालेंगे तो आप खाद पानी और जो भी चीजें करना है वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि नीचे की शाखाएं क्या होती है, जमीन से लगती है, तो क्या होगा कि उसमें फल भी आ जाएंगे तो वो अच्छे मार्केट प्राइस या खाने उपयुक्त तो नहीं होती है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि नीचे की शाखाओं को बिल्कुल निकालें। एक हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि वाटर सक्कर, तो वाटर

0: एक उपयुक्त अनुपात में पोषण चाहिए। जैसे हम अपने लिए बोलते हैं कि पोषित फल खाना है, हमें हमें वो अनाज खाना है जिसमें पोषण हो, तो उसी प्रकार हर फल के पौधे को पोषण की आवश्यकता है। यदि हम इसे अनदेखा करेंगे तो जो आज हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। किसान भाई, अपने बागों में आपने अनुभव किया होगा कि कई किसान क्या होते हैं कि फसल लेते जाते, लेकिन एक समय आता है जैसे 4 से 5 साल के बाद वो हमारे पास शिकायतें लेके आते हैं कि जी मेरा अमरूद था बहुत अच्छा फसल दे रहा था लेकिन आज नहीं दे रहा है, आम के बाग बहुत अच्छा फसल देता था लेकिन आज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उपयुक्त पोषण, उसमें से कम उपज है, कम गुणवत्ता वाले फल है, उसका कारण ये हो सकता है। इसलिए हमें पोषण का उपयुक्त अनुपात में हर समय या हर सीजन में हमें उपयोग करना जरूरी है। जैसे आपने बोला कि हम कैसे जाएं, कैसे पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करें, तो पहला तो होता है कि जब भी हम बाग लगाते हैं तो अपने जमीन की न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करवाइए, उसका क्या पीएच होगा, क्या आपका पानी सही है, क्या आपका जमीन सही है, उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, तो इसकी प्रोफाइलिंग तो हम बाग लगाने से पहले पहले करते ही हैं। लेकिन क्या होता है कि हर साल हमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिशन अपने बागों में लगाना जरूरी है, देना जरूरी है। जब भी हम फल लेते हैं तो उसमें जो हमारे बाग हैं या पेड़ हैं, इन न्यूट्रिशन को, इन पोषण को उपयोग करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम बोलते हैं कि हम फल तोड़ रहे हैं, तो उसके रूप में वो न्यूट्रिशन जाता है। तो उनकी भरपाई करने के लिए जैसे सबसे अच्छा चीज़ तो है कि ठीक है, आपका जमीन का प्रोफाइल आपके पास होता है, आपके पास रहता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर को भी हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते कि ये सस्टेनेबल वे नहीं है, तो इसलिए हम मानते हैं कि जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग है, बीच बीच में हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप जैसे फसल नहीं है तो ग्रीन मैन्यूरिंग कीजिए, जैसे ढैचा लगाइए जो बीच में जो खाली जगह है उस और उसको लगभग 30 से 35 दिन में पलटवार कीजिए, तो उसके क्या है, ये हरित खाद के रूप में आएगी। पहला चीज, मूंग को भी लगाते हैं लोग, मूंग को भी हरित खाद के रूप में उपयोग कीजिए। ये क्या है कि ये नत्रजन फिक्स करने वाले हैं, तो इससे जो नत्रजन की मात्रा अच्छी होगी, और फिर जब आप पलटवार करते हैं तो उसमें काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ न्यूट्रिएंट भी आते हैं, तो आप हरित खाद है इसका उपयोग जरूर करिए। तो ये बहुत सारा जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, तो इसके तौर पे हम या हमारी जो निर्भरता है गोबर की खाद या वर्मी पे उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है अपने बागों में पोषण देने का। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि इन चीजों का आप उपयोग जरूर करें। साथ ही साथ कभी कभी देखा गया है कि जिंक या बोरान की भी कमी होती है। जिंक और बोरान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फलों में, खास करके जैसे अमरूद है तो बोरान होता है कि हम बोलते हैं कि फल फट रहे हैं तो बोरान का एक समुचित मात्रा होना चाहिए जमीन में, तो बोरान और जिंक की मात्रा भी बीच बीच में उपयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, तो साथियों वैसे ही हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है कि उन्हें भी सही पोषक तत्व जो है वो सही समय पर मिलते रहें। और सिंचाई और ड्रेनेज की बात करें तो डॉक्टर साहब, बाग में हम कई बार देखते हैं कि पानी की कमी की समस्या भी होती है और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग भी हो जाती है। तो डॉक्टर चवलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुड़ाई के बाद इरीगेशन और ड्रेनेज मैनेजमेंट में जो है हमारे बागवानों को क्या ख्याल रखना चाहिए।
0: मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे बारिश का सीजन होता है, जैसे अभी हमने देखा कि जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश हुई, तो उस समय क्या है, पानी का भराव ना होने दे, उनको जितना जल्दी हो सके अपने बागों से ड्रेन करके निकालना है, बिल्कुल खड़े नहीं होने देना है सादे शब्दों में। दूसरा चीज है पानी की आवश्यकता, तो इस समय पानी को आप 10 से 15 दिन, जैसे भी आपके पास ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर या जो भी बेसिन इरीगेशन कर रहे हैं आप, फ्लड इरीगेशन जो खुला छोड़ने वाले पानी है उनको अवॉइड करें, इससे पानी की भी खपत ज्यादा होती है, तो समुचित मात्रा में पानी का उपयोग और पानी अपने बागों को देते रहें।
1: बिल्कुल, यानी पानी देना मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पानी की जरूरत को समझना असली मैनेजमेंट है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जब बागों में फलों की तुड़ाई हो गई तो उसके बाद कुछ कीट और रोग भी होते हैं जो कि हमारे बाग में पीछे रह जाते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करें जिससे कि उन्हें फैलने से रोका जा सके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कीट और रोग का नियंत्रण करना चाहिए बाग।
0: तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि फल की तुड़ाई होने के बाद भी वे अपने बागों में नियमित रूप से जाएं, और बहुत सारी चीजें आती है जैसे अंगूर है, अभी उत्तरी भारत में अंगूर है तो उसमें एंथ्राक्नोज, पाउडी मिल्डू, डाउनी मिल्डू, ये पूरे अच्छे से आते हैं। फिर ऐसे आम में बात करें तो एंथ्राक्नोज, फिर पाउडी मिल्डू, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। जैसे अभी मैं बोलूंगा मिली बग, किसान भाई हमें मार्च में आएंगे और मिलेंगे और बोलेंगे कि वो सफेद कीड़ा आएगा, तो इन सब का मैनेजमेंट हमें अभी करना है। पहले अच्छे से जुताई करवा लीजिए अपने खेतों के, और जहां जहां कैनोपी एरिया है उसमें जैसे क्लोरोपायरीफॉस

0: पास है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको वहां ड्रेंचिंग कीजिए, ताकि उसके जो अंडे हैं या जो लार्वी और जो बनेंगे वो पूरी तरह नष्ट हो जाएं, तो आगे जो आप फसल लेंगे उसके लिए काफी ही लाभप्रद होगा। उसमें कम से कम जैसे कोई फंगस वाली जो चीज आ रही है तो उसके लिए आप फंजीसाइड का उपयोग करें, और यदि आपको मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये क्या रोग है या क्या कीट है, तो आप अपने निकटस्थ जितने भी KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां जाके जितने भी हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप सलाह लेके एक उपयुक्त मात्रा में कीटनाशक हो चाहे रोगनाशक हो उनका उपयोग करना है, ना हमें कम और ना ही ज्यादा।
1: तो हमारे जितने भी किसान मित्र या बागबान हमें सुन रहे हैं, उनसे हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि फलों की तुड़ाई के बाद अपने बागों में प्रबंधन करें। इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो भी हैं, जो समसामयिक कार्य है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, बगीचे की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चवलेश, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: और अब कोमल अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: तो अभी आप सभी ने सुना पुष्पा गोसाई का गाया हुआ ये लोकगीत।
1: और कोमल, अब हमारे किसान बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे मौसम की जानकारी का, ताकि उसके अनुसार वो अपनी फसलों का प्रबंधन कर सकें। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास मौसम साफ रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
0: तो ये तो बात थी मौसम की, लेकिन इसके साथ साथ अपने किसान मित्रों को ये भी बता देते हैं शशि कि वो इस समय अपनी खेती में कौन कौन से काम कर सकते हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये धान की फसल की रोपाई और किस्म के अनुसार बाली निकलने और दाना बनने की अवस्था है, और ये जो चरण है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस समय में पानी की कमी होने के कारण से जो दाने हैं वो ठीक प्रकार से भर नहीं पाते, तो इसकी वजह से बालियों में दाने की संख्या और आकार दोनों घट जाते हैं और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है किसान भाइयों।
1: इसके अलावा किसान बहन भाइयों, इस समय कपास की फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। इनमें मीली बग, जैसिड माहू, सफेद मक्खी, रेड कॉटन बग, हरा तेला, भूरी सुंडी और बालों वाली सुंडी प्रमुख हैं। ये कीट पत्तियों और तनों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और फल धारण क्षमता घट जाती है। रेड कॉटन बग के अंडों को नष्ट करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें और खेत के आसपास उगी घास को नष्ट करें।
0: किसान साथियों, इस समय गन्ने पूरी वृद्धि की अवस्था में है और तेज हवा या तूफान की स्थिति में फसल के गिरने की आशंका ज्यादा रहती है। इससे बचाव के लिए गन्ने की दूसरी तीसरी बंधाई जरूर कर लें, और बंधाई हेतु सूखी पत्तियों का उपयोग करना अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि वो पौधे को अच्छी तरह से सहारा देती हैं और जकड़ कर रखती हैं। खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहे ताकि नमी संतुलित बनी रहे और फसल की बढ़वार प्रभावित न हो।
1: किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही मौसम आधारित कृषि सलाह की। और अब किसान बहन भाइयों, आपको इंतजार होगा आजादपुर मंडी के बाजार भाव का। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों के भाव की।
0: सब्जियों की बात करें तो आलू 13 रुपए प्रति किलो, प्याज 32, टमाटर का भाव रहा 24 रुपए प्रति किलो, वहीं बैंगन 29 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 21 रुपए प्रति किलो, खीरा 24 रुपए प्रति किलो, घिया 11 रुपए प्रति किलो, भिंडी 20 रुपए प्रति किलो।
1: और अब बात करें फल के भाव की, तो सेब बिका 102 रुपये प्रति किलोग्राम, केला 19 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 70 रुपये प्रति किलोग्राम, पपीता 23 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किसान बहन भाइयों, ये आजादपुर मंडी का बाजार भाव। और अब कोमल, समय हो चुका है अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति लेने का, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि उनको आज का कार्यक्रम किसान वाणी कैसा लगा। इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
0: feedback@fnh.gmail.com।
1: इसी के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। किसान बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ दीप्ति और गजल की महफिल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम।

कहते हैं ना जनाब कि वो अच्छे हैं तो बेहतर है, बुरे हैं तो भी कबूल हैं। वो अच्छे हैं तो बेहतर है, बुरे हैं तो भी कबूल हैं। मिजाज़ी इश्क में ऐब हुनर देखे नहीं जाते।

गज़ल अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की पुरसुकून आवाज़ में। और एक बार फिर इसी खूबसूरत आवाज़ को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हम आपको सुनवा रहे हैं और साथ में कर रहे हैं ये इल्तिज़ाम।

तो बस इसी चाहत के साथ, इसी कल फिर मिलने की चाहत के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत चाहूंगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, सीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानक सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 10,870 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पालना केंद्रों से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस सम्मान पहल में शामिल किया जा रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि आंगनवाड़ी बहने बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं तक सेवाएं पहुंचाने, टीकाकरण में सहयोग और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 2 वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर और स्थायी भवनों में विकसित करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: आने वाले 2 साल में हमारी जितनी आंगनवाड़ी है वो हमारी पक्की खुद की बिल्डिंगों में होगी। पहले चरण में हमारे जितने स्कूल थे नगर निगम के, हमने अपनी आंगनवाड़ी को वहाँ शिफ्ट करना शुरू, बाकी की आंगनवाड़ियों को भी हम इसी तरीके से बेहतर जगह पे नई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी तो नई कंस्ट्रक्शन करेंगे और हर सुविधा को देंगे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हैदरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में क्षेत्रवासियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3: इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैदरपुर में लगभग 5,000 गज भूमि पर 12वीं तक के नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और छठ घाट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में निरोग धाम विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा, जहां आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों पद्धतियों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हैदरपुर क्षेत्र के AU ब्लॉक और AO ब्लॉक की झुग्गियों के लिए आवास निर्माण से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण में आयुर्वेदिक अस्पताल क्षेत्र की झुग्गियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र की एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और दिल्ली सरकार का उद्देश्य किसी को हटाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें नागरिकों के करीब लाया जाए ताकि उन्हें समय पर जांच और उचित उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त दिल्ली की नींव है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: दिल्ली के उप

0: राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में आयोजित सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता सामाजिक सुधार से अलग नहीं हो सकती। उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी, डॉ बीआर अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरदार तेजा सिंह समुद्री ने अपने अपने तरीके से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। इसके अलावा उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत के आह्वान को दोहराया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। 31 अगस्त से 23 सितंबर के बीच फॉर्म 6 के 1,14,073, फॉर्म 6A के 216, फॉर्म 7 के 1,960 और फॉर्म 8 के 41,897 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में जरूरी दवाओं की उपलब्धता के बारे में हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए बताया गया है कि सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संस्थान ने बताया कि लगभग 90% दवाएं उपलब्ध हैं और स्टॉक की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्ट में संस्थान में दवाओं की उपलब्धता की पूरी और वर्तमान स्थिति को सही तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार DSCI के साथ ही राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर लगातार बारीकी से नजर रख रही है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज उत्तरी क्षेत्र स्थित राजन बाबू अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। श्री यादव ने ब्रोंकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड कक्ष और लैब का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने, बिजली के लटकते तार ठीक करने और पेड़ों की छंटाई के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज हिंदू राव अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर दवाइयों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली तथा सफाई, प्रकाश और सड़क की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए।
2: ICU में 8 बेडेड है, इसको 18 किया जाने का प्रावधान। इसके साथ साथ जो एक रेजिडेंस ब्लॉक है वहाँ पे एक 200 से अधिक बेड का नया एक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें इसकी हमारे पेशेंट को और सुविधाएं मिलेगी, आसपास के लोगों को, दिल्ली के लोगों को।
0: श्री वाही ने लेबर रूम, बाल चिकित्सा आपातकालीन ब्लॉक और अन्य वार्ड का भी निरीक्षण कर उनके उन्नयन और मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि हिंदूराव अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ मरीजों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज दिल्ली गेट स्थित बाल भवन में नया रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निगम ने बताया कि केंद्र पर जरूरतमंद लोगों के लिए दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कपड़े, किताबें, खिलौने और बर्तन एकत्र किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उपयोगी वस्तुओं के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा देना और कचरे को कम करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में विकेंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन और राजधानी को कचरा मुक्त बनाने पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान कचरा पैदा करने वाले बड़े संस्थानों द्वारा कचरे को स्रोत पर ही शत प्रतिशत अलग करने, वार्ड स्तर पर प्रोसेसिंग करने और नियमों का सख्ती से पालन करने

पर बल दिया गया। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत आज सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी केवल एक अभियान नहीं बल्कि स्वच्छ दिल्ली के निर्माण के लिए जनभागीदारी से जुड़ा संकल्प है।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 14153 कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 पर प्रस्थान करेगी। ये गाड़ी अगले दिन सवेरे 4:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विश्व संचार हिंदुत्व का नाम की किताब जारी करने के बाद ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और शासन में सुधार करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। उन्होंने नई अर्थव्यवस्था के 3C यानी कम्प्यूट, कम्पेटेबिलिटी और कोलेबोरेशन का उल्लेख किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, इंजीनियर, विद्यार्थी और प्रौद्योगिकी कंपनियां देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा विनिर्माण में योगदान दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसके वास्तविक मूल्य का खुफिया जानकारी विश्लेषण, मिशन योजना, रसद, युद्धाभ्यास और निर्णय समर्थन में इसके उपयोग से पता चलता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीतने वाली वुशु खिलाड़ी रोशिबीना देवी और कांस्य पदक विजेता भारतीय रोइंग जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सांडा 60 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली रोशिबीना देवी के लगातार प्रदर्शन, साहस और जुझारूपन की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया।

0: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपका फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका लेकर हम हाजिर होंगे इस संदेश के बाद।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: सलाम, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका में। और आज फिर एक बार हाजिर हूँ मैं गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर। मैं यानी आपके साथ ही आपकी मितवा, आपकी दोस्त, आपकी अपनी दीप्ति, और हाजिर हूँ लेकर के आपको सुनवाने वाले बहुत खूबसूरत गीतों की एक प्यारी सी माला पिरोकर साथ में करेंगे कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बातें, कुछ कहेंगे अपनी, कुछ सुनेंगे आपकी, और शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को इस खूबसूरत से गीत के संग जिसको आवाज तो दी है अलका याग्निक साहिबा ने, लेकिन पर्दे पर खूबसूरत अदाकारी की है ऐश्वर्या राय ने। तो स्वीकार कीजिए मेरा।

लीजिए जी, हमारा सलाम भी आप तक पहुंच गया और आपका हमने प्रोग्राम में वेलकम भी कर लिया। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या इस गाने को सुनकर कुछ हुआ दिल में? भाई मुझे तो इस खूबसूरत से कॉम्बिनेशन को, जो कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का है, ये कॉम्बिनेशन पर्दे पर देख करके वाकई कुछ कुछ हुआ। खैर, जब हमने ये गीत सुना तो साथ में मेरे दिमाग में एक और बात आई कि देखिए ना, मोहब्बत पे चल पड़ने का कितना आसान सा तरीका है ना, पहले सलाम कर दो फिर आगे की देखी जाएगी। उसी ही तरीके से जब मोहब्बत के रास्ते पे चल पड़ो तो पहला एहसास क्या आता है मन में? पहला एहसास जो कि आपको मोहब्बत का फील करवाता है, वो शायद यही तो होता है कि कुछ कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है।

0: और गीत मालिका कार्यक्रम में एक बार फिर समय इस छोटे से संदेश का।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, आपकी अपनी दोस्त दीप्ति पाठक के संग। बातें कर रहे हैं हम मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की, और कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं उसमें। कब लगता है कि कुछ कहा जाए, कभी लगता है कुछ कह नहीं सकते, कभी लगता है मिल गए या कभी लगता है बस मिलना ही तो बाकी है। तो देखिए उसी कुछ कुछ वाली फीलिंग को हम और आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको कुमार सानू साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत संगीत।

इश्की फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने सुना कुमार सानू साहब की आवाज़ में। और एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं हम मोहब्बत के सफ़र में। तो जब आगे ही चलना है, आगे बढ़ना ही है, तो चलिए सुन लेते हैं कि ये जो दिल है ये क्या कह रहा है।

दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में कुछ ऐसे शामिल हो जाते हैं कि जिनका साथ किसी भी ख़ास मौके, किसी ख़ास बात की पहचान का इंतज़ार नहीं करता। वो दूर हों तो भी उनकी मौजूदगी आपको आसपास ही फील होगी। उनकी एक बात, उनका एक ज़िक्र चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, और ज़िक्र होते ही जाने क्यों दुनिया बहुत खूबसूरत सी लगने लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन प्यार क्या सिर्फ किसी को चाहने का नाम है? ये प्यार सिर्फ किसी को चाहने का नाम तो नहीं? और कभी-कभी मन में ये सवाल भी तो उठता है कि जिसे हमने अपनी दुनिया में इतनी खास जगह दे रखी है, क्या उसकी दुनिया में भी हम उतने ही खास हैं? इसी सवाल, इसी खूबसूरत कश्मकश को सोचते सोचते, उस खूबसूरत इंसान को याद करते करते, दिल में और भी बहुत से खूबसूरत जज्बात हैं जो उठते हैं। तो चलिए देते हैं उन्हीं जज्बातों को आवाज़ इस गीत के जरिए।

तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। वैसे दोस्तों, मेरा मानना है कि कभी कभी ना किसी के आने भर से जिंदगी का रंग रूप ही बदल जाता है। जो बातें कल तक अधूरी सी होती थीं, अधूरी सी लगती थीं, उनमें एक खास चमक नजर आने लगती है। वो कहते हैं ना, किस्मत कब किस मोड़ पर कोई खूबसूरत कहानी लिख दे किसे पता, बस एक मुलाकात होती है और लगता है जैसे बरसों से यही तो अपना था। हाँ, मन में सवाल भी आता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ऊपर वाले की कोई खास मेहरबानी हो गई है। और शायद कुछ मुलाकातों का मतलब वक्त बीतने के साथ साथ समझ में आता है। जब किस्मत सचमुच मुस्कुरा दे तो उसका जिक्र भी कुछ खास हो जाता है। ऐसा लगता है कोई आसमान पर चमकता हुआ सा सितारा था जो दिखाई दिया और हमारा हो गया।

और दोस्तों सच में कभी कभी ना किसी का मिलना किस्मत का तारा सा चमका देता है। एक मुलाकात होती है और लगता है कि अच्छा जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती थी। चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सी ज्यादा रहने लगती है, छोटी छोटी बातों में खुशियां ज्यादा मिलने लगती हैं, कल की फिक्र थोड़ी कम और आने वाले कल से उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और शायद यही तो है प्यार की शरारत, जिंदगी वही रहती है, नजरिए में रंग भर जाते हैं। और जब साथ सही हो तो सफर भी खूबसूरत और मंजिल का इंतजार भी। तो इसी इंतजार को, इसी सफर को बनाए रखते हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। और इसी मुस्कान, इसी उम्मीद और थोड़ी सी प्यार भरी मस्ती और शरारत के संग आज की रोलर कोस्टर राइड को गीत मालिका की हम यहीं पर रोकने की, थामने की इजाजत चाहेंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीप्ति, फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के संग।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
3: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 70 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
3: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईगोट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आप

0: की मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
2: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
1: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
3: The character of war,
4: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
3: With the changing character of war.
1: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय, जब वो उचित समझे, SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
5: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू

0: कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
3: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
5: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
4: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
7: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं हमें इन अनुभवों से भी सीखना है अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने
6: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
7: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है. और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना समझना देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली
6: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
7: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे शब्दों में नहीं देंगे हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे
6: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the mission Karmyogi.
8: Mission Karmyogi was launched in September 2020 and visioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karmyogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karmyogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over

0: जापान में एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में चांदी के तमगे हासिल किए हैं। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा जीता है, जबकि डबल स्कल्स रोविंग और मिक्स्ड स्कीट शूटिंग टीमों ने भी कांस्य के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए सभी को नौजवानों के अहम रोल को पुरजोश तरीके से बढ़ावा देना होगा। जनाब मोदी ने वड़नगर से वाराणसी का सफर कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासत, इंतखाबात और निज़ाम हुक्मरानी की अपनी अपनी जगह है। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए वक्फ लोग हैं।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी, और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है, और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद हयात होना चाहिए और ये जज्बा हर फर्द में मौजूद

0: करें कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि चाहे वो पीएम किसान हो या पीएम सूर्य घर योजना, खिदमत ही सबसे बड़ा मुहर्रिक है और ऐसी बेशुमार स्कीमें हैं जो सफे आखिर तक खिदमत की फराहमी के लिए बनाई गई हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि यह खिदमत का जज्बा ही है जिसकी बदौलत 4 करोड़ गरीब लोगों को मुस्तकिल मकानात मिले हैं।
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: हुकूमत ने खुर्दनी तेल की घरेलू कीमतों में इस्तेकाम पैदा करने के मकसद से दरामद किए जाने वाले सभी खुर्दनी तेलों पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD में कटौती की है। इस कदम से खुर्दनी तेल की बैन अल-अक़वामी कीमतों में तेजी से हो रहे इजाफे के दौरान ग्राहकों को राहत मिलेगी और महंगाई के बढ़ते दबाव से निमटने में मदद मिलेगी। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने बताया कि सूरजमुखी के खाम तेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 0, जबकि सोयाबीन के खाम तेल और खाम पाम तेल पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वजारत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने रिफाइंड खुर्दनी तेल पर आयद होने वाली BCD में कटौती की है, साथ ही साथ खाम तेल और रिफाइंड खुर्दनी तेलों के दरमियान इम्पोर्ट ड्यूटी के फर्क को 19.25% पर बरकरार रखा है। वजारत ने मजीद बताया कि खुर्दनी तेलों की BCD पर की गई कटौती में उनकी आमद के बाद मजीद कमी आ सकती है, जिससे घरेलू सप्लाई चेन के जरिए फवायद की मुंतकली में मदद की उम्मीद है। इस दौरान हुकूमत ने खुर्दनी तेल की अंजुमनों और सनती शराकतदारों को एडवाइजरी जारी की है ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती से होने वाले फायदों के ग्राहकों तक पहुंचने को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि मिशन कर्मयोगी के जरिए इस नज़रिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मिशन कर्मयोगी का आगाज सितंबर 2020 में एक ऐसी सिविल सर्विस के तसव्वुर के साथ किया गया था जो मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग हो, भारतीय अकदार से जुड़ी हो और आलमी नुक्ता नज़र की हामिल हो। इस मिशन का मकसद सरकारी अफसरान की सलाहियतों और महारतों को मजबूत बनाना और सिविल सर्विस को शहरियों पर ज्यादा मरकूज बनाना है। मिशन कर्मयोगी के तहत आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 120 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड सार्फिन हैं और मुख्तलिफ शोबों, फंक्शनल और रवैया जाती सलाहियतों से मुतालिक 6,500 से ज्यादा कोर्सेज दस्तयाब हैं। इनमें मसनूई जहानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुतालिक 200 से ज्यादा कोर्सेज भी शामिल हैं, जिनका मकसद सरकारी अफसरान को डिजिटल मालूमात और महारतों से आरास्ता करना है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का मकसद सरकारी अफसरान को शहरियों पर मरकूज बनाना है।
0: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का आगाज 2047 तक विकसित भारत के अज्म को पूरा करने के विजन के साथ किया गया।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं, उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: तमाम मरकजी सरकारी मुलाजमीन और ऑल इंडिया सर्विसेज AIS के अफसरान के लिए अपने मुतालिका शोबों में आई गॉट कर्मयोगी पर सालाना मुकर्रा कोर्सेज मुकम्मल करना जरूरी है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और मुत्तसला जुनूबी ओडिशा में बने हवा के गहरे दबाव की वजह से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और सैलाब जैसी सूरत हाल की वजह से सड़कों पर आमोदरफ्त मुतासिर रही। इस दौरान रियासती हुकूमत ने राहत और इनखला से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं कल और हफ्ते के रोज भी मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा के 6 जिलों कोरापुट, गजापति, मलकानगिरी, गुंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ के 37 ब्लॉक्स, 127 ग्राम पंचायतें और 273 गांव मुतासिर हैं। वहीं 20 वार्ड समेत 5 शहरी इलाके भी इस मौसमी सूरतहाल से मुतासिर हैं। मलकानगिरी में पानी के सड़कों और पुलों के ऊपर से बहने की खबर है। वहीं जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने से कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। हुकूमत ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम्स को फाल किया है और राहत साजो सामान की फराहमी को यकीनी बनाते हुए कुदरती आफात से निपटने की ओडिशा की फोर्स NDRF और फायर खिदमत टीमों को तैनात किया है। एहतियाती कदम के तौर पर गजपति, नवरंगपुर और कालाहंडी में कल स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली में मतला अबर आलूद रहने की भी पेशगोई की है। बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इशारिया में 1.8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सेंसेक्स 1,249 पॉइंट्स गिरकर 73,581 पर, जबकि निफ्टी 384 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,063 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वसी मार्केट में मिड कैप इशारिये में 2.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप 100 इशारिये में 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान जर मुबादला बाजार में भी आज रुपए की कदर में 21 पैसे की गिरावट आई और ये डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 95 पैसे के करीब बंद हुआ। दिल्ली से आयुषी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: मेडिकल साइंस इम्तिहानात के कौमी बोर्ड NBEMS ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट PG 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तालीमी साल 2026-27 के लिए बराह रास्त 6 साल कोर्सेज MD, MS, DNB, DRNB और PG डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए इम्तिहानात मुल्क भर में 30 अगस्त को मुनक्कद कराए गए थे। NBEMS ने कहा है कि उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 अक्टूबर से अपना इन्फरादी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NBEMS ने मजीद बताया कि वेबसाइट पर अगले महीने की 1 तारीख को आंसर की अपलोड किए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA के इजलास के मौके पर एंटीगुआ एंड बरबूडा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउने के साथ मीटिंग की। सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्याती शराकत दारी, सलाहियत साजी और आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम में ताउन जारी है। उन्होंने दौलत मुश्तरका हुकूमत के सरबराहों की मीटिंग CHOGM की कामयाबी के लिए भारत के मजबूत अज़्म का इजहार किया। सेक्रेटरी मगरिब सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर G7 चेयर फ्रांस की जानिब से मुनक़िद G7 तरक्याती वुज़रा के दूसरे इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में जनाब जॉर्ज ने इंसानियत पर मरकूज और जामे तरक्की की राह अपनाने पर जोर दिया जो सर्वोदय के उसूलों पर मबनी है। भारत की तरक्याती शराकत दारी का हवाला देते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने भारत के इस मौकफ को उजागर किया कि तरक्की महज माली इमदाद फराहम करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मकसद मकामी सलाहियतों को फरोग देना और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाना भी है। जापान के आइची नगोया में जारी एशियाई खेलों 2026 में सीमा कुमारी ने खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ में मुल्क के लिए कांस्य का तमगा जीता है। उन्होंने आज शाम यह तमगा हासिल किया। पिछले 16 साल में एशियाई खेलों में खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ मुकाबले में भारत का यह पहला तमगा है। इस दौरान वुशु में भारतीय खिलाड़ी रोशीबीना देवी नाओरेम ने खवातीन के 60 किलोग्राम जुमरे में चीन की

यांग जियायो को 2-0 से शिकस्त के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस दौरान मर्दों के डबल स्कल्स में सलमान खान और सतनाम सिंह ने आज कांस्य का एक तमगा जीतकर आईची नगोया में एशियन गेम 2026 के दौरान अपनी रोविंग मुहिम का अख्ताम किया। भारतीय जोड़ी नगरागोवा इंटरनेशनल रेगेटा कोर्स में 6:13 और 25 मिली सेकेंड के साथ तीसरे नंबर पर रही। चीन के यी यूडी और नी येड 6:09 और 77 मिली सेकेंड के साथ पहले नंबर पर रहे और उन्होंने सोने का तमगा जीता। वहीं उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों ने 6:10 और 49 मिली सेकेंड की कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा अपने नाम किया। ये मर्दों के डबल स्कल्स में भारत का पहला एशियन गेम्स तमगा है। इस दौरान निशानेबाजी में आनंदजीत सिंह नरुका और परिनास ढालीवाल की जोड़ी ने मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता है। मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में एशियाई खेलों की तारीख में भारत का यह पहला तमगा है। भारतीय जोड़ी ने 48 में से सिर्फ 4 निशाने गंवाए और जनूबी कोरिया के साथ बराबरी पर रही। इस दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में तमगा जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर अजम मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वजीर अजम ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर लाने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। हुकूमत ने घरेलू कीमतों को कम करने के लिए खाम खुर्दनी तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में कटौती की है। ओडिशा में जनूबी इलाकों और मुत्तसिला शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हवा के गहरे दबाव के बायस शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 1248 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73581 पर बंद हुआ। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में चांदी के तमगे जीते हैं। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा अपने नाम किया है, जबकि डबल्स स्कल रोविंग और मिक्स्ड स्कीट शूटिंग टीमों ने भी कांस्य के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

ना आपके नाम मेरी जबाँ से आपकी हो तकमीले सना मुमकिन ही नहीं, मेरी जबाँ से आपकी हो तकमीले सना मुमकिन ही नहीं, फिर भी ये अल्फाज का तोहफा चाहे मदीना आपके नाम, फिर भी ये अल्फाज का तोहफा चाहे मदीना आपके नाम, मेरे दामन को भी भर दें आज तो आका रहमत से, मेरे दामन को भी भर दें आज तो आका रहमत से, रहमत रब का कुल हर दरवाज़ा चाहे मदीना आपके नाम, रहमत रब का हर दरवाज़ा चाहे मदीना आपके नाम, काबा हो या अर्ज़ मदीना कौसर हो या अर्श मजीद, काबा हो या अर्ज़ मदीना कौसर हो या अर्श मजीद, मालिक कुल का सब सरमाया चाहे मदीना आपके नाम, उसकी किताब नूर का आका आप ही तो दीवा चाहें, उसकी किताब नूर का आका आप ही तो दीवा चाहें, लफ्ज़ कुन का सारा किस्सा चाहे मदीना आपके नाम, लफ्ज़ कुन का सारा किस्सा चाहे मदीना आपके नाम।

فأس

وَإِنَّهُ

Bye.

ذكرى ما كنت

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض

0: अभी तो मरने हो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटे लाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में उनकी तबियत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे लाल वर्मा का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तंजानिया से कांगो जा रही एक नाव कल टांगानिका झील में उलट गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 100 लोग और सामान लदा हुआ था। 49 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है।

0: to 400-meter relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000-meter race after finishing at third spot in 32.50 minutes. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति। और इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं कुछ पुरानी यादों में और उन दशक पे जहाँ के गीत आज भी आपके दिल में बसे हुए हैं और इन गीतों के माध्यम से उन यादों को हम ताज़ा करते हैं। तो चलिए सुनवाते हैं ये पहला गीत।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर की आवाज थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आशीर्वाद से, मन्ना डे की आवाज है और संगीत वसंत देसाई ने दिया था।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत फिल्म आवारा से मुकेश की आवाज में। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

और अब सुनते हैं सुरैया व मोहम्मद रफ़ी की जुगलबंदी फिल्म दास्तां से ये गीत, शकील बदायूं के लिखे बोल और संगीत नौशाद का।

लता मंगेशकर व अन्य साथियों की आवाज़ों में फिल्म मुगले आजम से आपने सुना था ये गीत। अब आइए आनंद लेते हैं किशोर कुमार की आवाज़ का फिल्म अजनबी से, आनंद बख्शी के लिखे बोल और संगीत आर डी बर्मन का।

अगला गीत फिल्म हीरा पन्ना से गीत सुनहरे कार्यक्रम में आपके लिए आ रहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत आर डी बर्मन ने दिया था। आइए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना।

अब कार्यक्रम अंत की ओर। जी हाँ, तो अब समय है इस कार्यक्रम के आखिरी गीत का, और वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है वो कौन थी, राजा मेहदी अली खान के लिखे बोल, संगीत मदन मोहन ने दिया था, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं लग जा गले।

0: इसी गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वीं नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। नदी उत्सव के तहत 6 प्रदर्शनियां इस महीने की 30 तारीख तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4वां उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। इस 5 दिन के आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत पहली बार यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। यह फैसला महाराष्ट्र और पूरे देश की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी से अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग मानचित्र पर पुणे की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit

म्यूजिक। तो चलिए चल निकलते हैं इन गीतों के सफर पर। मैं और आप रेडियो के माध्यम से साथ जुड़े हुए हैं। मैं कीर्ति आपके साथ हूँ।

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: इसी के साथ गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ यार लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष

0: 1947 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिकार नहीं है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
2: संभावना है।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें

EIR लाइव न्यूज 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत, और अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा। गीत रचना है यानी कि गजल रचना मिर्जा गालिब की, और संगीत बद्ध किया है निहारिका सिन्हा ने।

0: गीत गजल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतन शर्मा, और एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और ही बहुत खूबसूरत गजल। गुलकार हैं गुलजार साहब और कलाकार हैं भूपेन हजारिका।
1: मैंने भूपेंदा के गीतों का अच्छा अनुवाद नहीं किया, मैं जानता हूं, या वो जानते होंगे जिन्होंने ओरिजिनल असमिया सुना है। मैंने कोशिश की थी इसलिए कि अनुवाद मुमकिन नहीं है, किसी भी इलाके की शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया है कि सुनने वालों को उकसाऊं कि वो इस शायर को, इस गायक को, इस संगीतकार को ढूंढें, तलाश करें और सुनें।

0: और इसी के साथ ही आज का गजल गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:18।
1: नमस्कार, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बी विजयश्री का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले सुनिए त्यागराज स्वामी की ये भक्ति रचना दशरथ नंदना।

0: आइए अब सुने श्री चंद्रशेखर भारती स्वामी जी की ये रचना शारदे करुणा निधि।
1: शारदे करुणा निधे सजला।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, तुंगितीरा विराजम। ये रचना है कमलेश विठ्ठल दास की।

0: और इसी के साथ अब आज का अर्चना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जी आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओ आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अनाघा एम नाम्बीसन का गायन। आपके संगत कलाकार हैं वायलिन पर जी उमा, मृदंगम पर हैं मनोहर बलथ चंदीराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अनाघा एम नाम बीसन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति की थी वी उमा ने। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और 52 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब प्रमुख प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा अर्ध मत्स्येन्द्रासन। 5:20

अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे सौरभ बनाउधा का बांसुरी वादन, राग होगा नट भैरव। सुबह 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम का विषय रहेगा सफलता का दर्शन। संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्वाति मिश्रा का के भजन

0: गीतों भरी गुड मॉर्निंग हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर। 8:45 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन। राग होगा मियां की तोड़ी। सुबह 9:15 पर आज आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा, जिसमें वार्ता का विषय रहेगा स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर कृष्णा मणि पाठक। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30 और सुबह 10:10 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और 11:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शक, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश हैं। करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र

0: शासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। श्री जॉर्ज ने सत्र को संबोधित करते हुए विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। ये सत्र विकास के अधिकार संबंधी घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 30% से अधिक नहीं होगी जिन्हें इतालवी भाषा का बहुत कम ज्ञान है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नियमों का उद्देश्य बच्चों को समाज में बेहतर तरीके से जोड़ना है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: मिस्टर मोदी सेड एवरीवन मस्ट विगरसली एडवांस द पिवोटल रोल ऑफ द यूथ इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। द पीएम सेड वी आर पीपल डेडिकेटेड टू नेशन बिल्डिंग एंड सेट आउट विद द रिजॉल्व टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया। Government sources has emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10 और 18 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय है अर्ध मत्स्येन्द्रासन।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें।

किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी